धुरंधर के साउंडट्रैक के बिना कहां पूरा हुआ है कोई भी प्लेलिस्ट आजकल। मेरा रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ड्रॉप के साथ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 8:00 हो चुके हैं, 12 मिनट बाद स्टूडियो क्लॉक। एंड आज की डेट से यानी कि मे द 4th बी विद यू। ऑफ कोर्स इट विल बी विद यू टिल द एंड ऑफ टुडे, बट एक चेंज जो है यहाँ पर भी सिंगापुर में भी आ रहा है। क्रॉस बॉर्डर टैक्सीज जो है, अगर मैं सिंगापुर एंड जोहर की बात करूँ, देन इट विल नाउ बी अलाउड टू drop passengers anywhere, whether it's Singapore या फिर across the key areas जैसे जोहर के जोहर बारो, स्कंदरपुर तेरी, फॉरेस्ट सिटी, खुलाए एंड सेनाए। नाउ अभी तक क्या होता था कि पैसेंजर्स जो है दे हैड टू गेट डाउन ओनली एट फिक्स्ड टर्मिनल्स, ठीक है, जैसे मानसान स्ट्रीट सिंगापुर में या फिर लार्किन टर्मिनल जोहर में। मतलब लास्ट माइल का जो ट्रेवल है वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता था, बट नाउ दैट रिस्ट्रिक्शन इज गॉन। सो टेक्निकली वन कैन नाउ एंजॉय अ मच मोर डोर टू डोर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, विच ऑनेस्टली इट्स काइंड ऑफ अ बिग विन फॉर द रेगुलर कम्यूटर्स जो आते जाते रहते हैं सिंगापुर और जोहर में, उनका लगा रहता है आना जाना। एंड एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट कुछ ऐसा है दैट राइड हेलिंग भी अब जो है इंक्लूड हो रहा है इन द सिस्टम। इनफैक्ट ग्रैब कार जो है दे हैव बीन गिवन द फर्स्ट लाइसेंस टू ऑपरेट क्रॉस बॉर्डर राइड हेलिंग सर्विसेज बिटवीन द टू कंट्रीज। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, पिकअप्स जो है दे स्टिल रिमेन कंट्रोल। मतलब टैक्सीज कैन ड्रॉप कर सकते हो कहीं पर भी, बट वेन दे आर इन द अदर कंट्री दे कैन ओनली पिकअप पैसेंजर्स फ्रॉम डेजिग्नेटेड लोकेशंस। मतलब कि अगर इन सिंगापुर पिकअप पॉइंट्स जो है इंक्लूड एरियाज नियर वीवो सिटी, टैम्पनिस एंड जोकुन, एंड जोहर में प्लेसेस लाइक मिड वैली, साउथ की, टॉपन मॉल एंड अंगसाना मॉल। सो द सिस्टम इज ओपनिंग अप, दैट इज फॉर श्योर, बट स्टिल कीपिंग थिंग्स structured and fair for local drivers. और इसका main aim कुछ ऐसा है to make just the cross border का travel more seamless and kind of reducing the dependency on illegal services and overall improve connectivity between the two countries. So yes, अगर आपने कभी ऐसा struggle किया है with the last mile ride after crossing the border, this change is definitely going to make things smoother. So it is going to of course happen. Aaj se isko apply kiya jayega. Sapna aunty, have you gone 2GB? Yes. Like a lot of other people, there are times jab mujhe lagta hai ki you know wahan jaakar dekho ghumna ko ghumna ho jayega aur saath mein saman thoda sa reasonable price mein bhi aa jayega. Yes, I have done that. Good morning.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085 6577।

बारिश होगी या नहीं होगी, दैट्स द सवाल एंड दैट्स द अपडेट। 8:30 बज चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं द मॉर्निंग शो, मैं हूं अंतरा, आज यहां पर आपके साथ। सो क्विक वेदर चेक अगर देखा जाए तो यू ऑलरेडी आई थिंक नो दिस वन, नो सिंगापुर इज एक्सपेक्टेड टू सी क्वाइट अ बिट ऑफ रेन इन द फर्स्ट टू वीक्स ऑफ मे, दैट्स व्हाट द फोरकास्ट सेज। सो यस, अम्ब्रेला मोड को बिल्कुल ऑन रखना है। अकॉर्डिंग टू मेट्रोलॉजिकल सर्विस सिंगापुर, वी आर इन an inter-monsoon phase right now, which basically means thundery showers jo hai almost every day expect kiye ja sakte hain. Afternoon specially kaha ja raha hai, you can expect sudden showers popping up at different across different parts of the island, and on some days ye jo rain hai evening tak stretch ho sakta hai. Kabhi kabhi there could be even be some Sumatra squalls, which means more intense rain and gusty winds usually early morning hours, when I love that time, subah subah early morning jab बारिश होती है। एंड हियर इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, ओवरऑल रेनफॉल फॉर दिस पीरियड मे के फर्स्ट टू वीक्स इज एक्सपेक्टेड टू बी अबव एवरेज अक्रॉस सिंगापुर। सो वेल, डे टेम्परेचर्स जो है वो 33 से 35 डिग्रीज तक रहेंगे, ऑन सम डेज इवन स्लाइटली हायर। सो वेल, ये जो है बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर तो रेन आ रही है बट फिलहाल आज सुबह स्टूडियो में रेन नहीं आई है, दैट इज फॉर श्योर। कहाँ पे बरस रही है दैट I don't know. Radio Masti 24/7 live पर इतनी सारी रेन की बात होने के बाद पहले तो मैंने सोचा कि कोई बारिश वाला गाना प्ले करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद मुझे याद आया कि भाई मेरे प्लेलिस्ट में तो 90s आ ही सकता है, हो ही सकता है, एंड स्पेशली व्हेन आई प्ले दिस सॉन्ग somehow बारिश एंड रोमांस एंड everything kind of gets together. माहौल बनाए रेडियो मस्ती 24/7 live पर। गुड मॉर्निंग।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या
1: जी? जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
0: That is right. हम तो यही कह रहे हैं कि जितनी बार हम बताएं कि ggmartonline.com पर आपको क्या क्या और मिल सकता है, आप ही कहिए जी जी बिल्कुल। और जी जी कहते हुए टाइप करिए ggmartonline.com। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। लेट्स टॉक अबाउट द आर्म्स दे आर गेटिंग, एंड दिस इज अ वेरी खास बात विच यू नीड टू नो, बिकॉज ये जो आर्म ggmartonline में आपको अवेलेबल हो रहे हैं, इट्स केमिकल फ्री, इट्स कंप्लीटली ऑर्गेनिक, क्योंकि वो आ रहे हैं इंडिया से, इनके खुद के फार्म्स से। सो वेल, आप इमेजिन ही कर सकते हैं क्वालिटी। आई कैन वाउच फॉर श्योर, बिकॉज जब हमने ये बात करनी शुरू की थी, ggmartonline.com पर जाकर आप अल्फांसो आम जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। सो यस, आपके अंतरा ने भी मंगाया एंड इट इज रियली रियली डिलिशियस। सिंगापुर में बैठे बैठे कहीं आपके दरवाजे पे कोई डिलीवर करके इस तरह के गुड क्वालिटी अल्फांसो आम दे जाए, तो फिर आपको और क्या ही चाहिए, राइट? सो चाहे देवगढ़ हो, चाहे रत्नागिरी हो, फ्रॉम देयर फार्म्स आर स्ट्रेट टू योर डोर स्टेप। ggmartonline.com पर बिल्कुल आप ऑर्डर कर सकते हैं एंड गेट द मोस्ट ऑफ इट बिफोर ऑल ऑफ दिस गेट्स ओवर एंड द सीजन ऑल्सो गेट्स ओवर। और जब हम बताएं तो आप ध्यान से सुन भी लिया करें। इनफैक्ट वो तो एक्सक्लूसिवली अगर आप अभी ट्यून्ड इन है तो मैं आपको बता सकती हूँ कि new10 कोड जो है आप यूज कर सकते हैं व्हाइल यू आर ऑर्डरिंग फॉर आपके आम एंड अदर ग्रोसरी आइटम्स एज वेल। new10, यस, एंड यू कैन यू नो गेट द डिस्काउंट देन एंड देयर। वेल, इसी बात के साथ एक बार जाइए, अपने आप को रजिस्टर कराइए, रजिस्टर करके स्क्रीन शॉट भेजिए, तो वो भी एक तरीका हो सकता है आपको एक्सक्लूसिव प्रोमो कोड पाने का भी। सो जहां से भी देखिए, free exclusive codes, discounts and just amazing products at and only at ggmartonline.com। to yaad rakhiyega that ye cutie pie aapko kya bata ke gayi thi।

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं द मॉर्निंग शो। मैं हूं अंतरा आपके साथ एंड सीधा चलते हैं इंडिया एंड इंडियन एयरलाइंस की यहाँ पे बात कर सकते हैं। मेजर इंडियन एयरलाइंस एयर इंडिया इंडिगो एंड स्पाइस जेट जो है उन्होंने रेज किया है हाल ही में वेरी वेरी सीरियस कंसर्न। दे हैव टोल्ड द गवर्नमेंट दैट द एविएशन इंडस्ट्री इज अंडर एक्सट्रीम फाइनेंशियल स्ट्रेस एंड इन द वर्स्ट केस सिनेरियो दे कुड even be looking at stopping operations if things don't improve. कुछ देर पहले ही मैं ये खबर पढ़ रही थी दैट एयर इंडिया ने जून से काफी सारे इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है ऑलरेडी बंद करने का जो है प्रस्ताव ऑलरेडी सामने रखा हुआ है। सो इशू द बिगेस्ट फैक्टर द राइजिंग फ्यूअल प्राइसेस, राइट? वी ऑल नो अबाउट इट। एविएशन टर्बाइन फ्यूअल यानी कि ATF अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 40% ऑफ एन एयरलाइन का ऑपरेटिंग कॉस्ट। और अब विथ राइजिंग टेंशन इन द वेस्ट एशिया ग्लोबल ऑयल प्राइसेस दे हैव गॉन अप, प्लस एयर स्पेस के रिस्ट्रिक्शंस हैव मेड फ्लाइट रूट्स जो है और भी लॉन्गर एंड मोर एक्सपेंसिव स्पेशली फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल। मतलब एयरलाइंस को ज्यादा फ्यूल जलाना पड़ रहा है एंड कॉस्ट कंटिन्यूसली जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस द फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस हैज रिटन टू द गवर्नमेंट आस्किंग फॉर मोर यूनिफॉर्म फ्यूअल pricing system and also urgent financial support to manage the situation. Unka kehna hai ki agar immediate intervention abhi nahi hua to operations sustain karna mushkil ho sakta hai. Now for passengers iska direct impact jo hai possibly of course higher ticket prices which we can already see, route adjustments ya kuch services mein changes. So yes, this is not just an industry issue, it's something that could affect everyday travel plans as well. Filhal situation under discussion hai, but definitely something to keep an eye on. So well, baki aise khabro and updates ke liye you stay tuned to Radio Masti 24/7 Live and Ritz. Wrap up this hour, milte hain 9 baje ke us par. Good morning.

ऑलराइट, अब इतना गाना गा के हमारा वेलकम हुआ है तो फिर बात तो बन ही जाएगी। 9 बजकर हो चुके हैं 3 मिनट। गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूं अंशु आपके साथ। यहां पे चल रहा है द मॉर्निंग शो। यस, इट्स नॉट ट्यूसडे मॉर्निंग, इट्स अ मंडे मॉर्निंग एंड आई एम हियर। आज रेणुका जो है वो यहाँ पर रही है। वेल, इसी के साथ साथ वापस आते हैं सिंगापुर में और यहाँ पर लेते हैं अपडेट। बात कुछ ऐसी है कि अथॉरिटीज जो है यहाँ पर दे हैव आइडेंटिफाइड 3 नए ट्यूबरक्लोसिस या फिर टीबी के क्लस्टर्स इन द बिडोक सेंट्रल एरिया विद द टोटल ऑफ 13 लिंक्ड केसेस डिटेक्टेड बिटवीन 2023 एंड अर्ली 2026। नाउ ये जो केसेस हैं दे आर कनेक्टेड टू अ फ्यू स्पेसिफिक लोकेशंस जो बिडोक में है एंड बिकॉज ऑफ दिस स्क्रीनिंग जो है इज बीइंग कैरिंग आउट। आज से वो स्क्रीनिंग शुरू हुई है। सो फॉर पीपल वर्किंग एट दीज प्लेसेस लाइक हार्टबीट एट बिडोक ब्लॉक 216 बिडोक फूड सेंटर एंड मार्केट एंड सिंगापुर पूल्स आउटलेट इन बिडोक, ये सारी जगहों पे हूएवर आर वर्किंग द टेस्टिंग कहा जा रहा है आज से उनके लिए मैंडेटरी है। एंड फॉर मेंबर्स ऑफ पब्लिक हु हैव स्पेंट एक्सटेंडेड टाइम एट दीज लोकेशंस स्क्रीनिंग इज बीइंग ऑफर्ड वॉलंटरली एंड फ्री ऑफ चार्ज एज वेल। इन फैक्ट इफ समवन हैज स्पेंड अराउंड 96 आवर्स और मोर अक्रॉस दीज स्पॉट्स ओवर टाइम दे आर एनकरेज्ड टू गेट टेस्टेड एज वेल। हियर इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो 13 केसेस हैं दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन ट्रीटमेंट एंड दे आर नो लॉन्गर इन्फेक्शियस। सो एट दिस पॉइंट अथॉरिटीज जो है वो ये कह रही हैं दिस इज मोर अबाउट प्रिकॉशन एंड अर्ली डिटेक्शन रादर दैन इमीडिएट रिस्क। और टीबी के बारे में सिंपल बात, इट स्प्रेड्स थ्रू द एयर बट यूजुअली रिक्वायर्स प्रोलॉन्ग्ड क्लोज कॉन्टैक्ट। मतलब कैजुअल विजिट्स लाइक ग्रैबिंग अ क्विक मील जनरली लो रिस्क होते हैं। सो ये सिचुएशन जो है वो बहुत ही क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। स्क्रीनिंग इज इन प्लेस एंड द स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू कीप थिंग्स अंडर कंट्रोल। सो सिंपल टेक अवे कुछ ऐसा है, स्टे अवेयर, स्टे अपडेटेड। कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है बट हर चीज जान के रखने में भी कोई बुराई नहीं है। एंड टू कीप यू अपडेटेड एंड पोस्टेड ऑन द गो इज अस रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। गुड मॉर्निंग।

0: टूट जाए या चार्जर गुम हो जाए, मम्मा सब संभाल लेती है।
1: जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ।
0: This Mother's Day, give her the royal treatment she truly deserves with a majestic Mother's Day celebration. Shahi Maharani. Choose from a lavish lunch buffet or a special a la carte dinner experience on Sunday, 10th May. From tandoori delights to maki dal to kulfi pops and jalebis. All this at just $62 plus plus per adult and $42 plus plus per child. Plus, every mom receives a complimentary jar of gulab jamun or namak pare and a special photo card to capture the memory. Mother's Day Shahi lunch and dinner at Shahi Maharani Raffle City. Limited seats, book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions applied.
2: That is right. अब वो टाइम बहुत जल्द आने वाला है जब आपको अपनी मम्मियों को एटलीस्ट मदर्स डे वाले दिन तो छुट्टी देनी ही देनी चाहिए किचन से. आई थिंक दे कम्प्लीटली कम्प्लीटली डिजर्व दैट एंड दे ऑलवेज. इट्स जस्ट नॉट मदर्स डे, आई थिंक एवरी सिंगल डे दे डिजर्व द रॉयल एंड द शाही ट्रीटमेंट. बट फॉर दिस कमिंग मदर्स डे लेट मी मेक द प्लान फॉर यू, बिकॉज यार मम्मियों के बिना हम लोग क्या ही कर लेंगे, कुछ भी नहीं. वी आर जस्ट एब्सोल्युटली नथिंग विदाउट देम. सो वेल, गिव योर मदर द रॉयल द शाही ट्रीटमेंट शी ट्रूली ट्रूली डिजर्व्स विद दिस मजेस्टिक मदर्स डे सेलिब्रेशन. शाही महारानी हर साल जो है द कमाल के जो है ओकेजंस पे, एंड स्पेशली व्हेन जब बात हो मदर्स डे की, दे क्यूरेट इट विद सो मच ऑफ लव. लाइक इनका पूरा जो स्प्रेड होता है फ्रॉम द स्टार्टर्स टू द मेन कोर्स टू द स्वीट डिश एंड एवरी थिंग, ठीक है. तो लाविश लंच बुफे तो है ही है और स्पेशल आला कार्ट डिनर एक्सपीरियंस, यानी कि दोनों टाइम ही, चाहे आप दोपहर के टाइम पे जाए बुफे एंजॉय करें या फिर रात को आला कार्ट डिनर का एक्सपीरियंस ले. भाई माँ की दाल से लेकर कुल्फी पॉप्स टू जलेबीज तक, ऑल ऑफ दिस एट $62 प्लस प्लस पर अडल्ट एंड $42 प्लस प्लस पर चाइल्ड. अलॉन्ग विद दैट मम्मियां जो है उनको और स्पेशल फील कराने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री जार ऑफ गुलाब जामुन या नमक पारे, एंड इन फैक्ट दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट अ स्पेशल फोटो कार्ड टू जस्ट कैप्चर द मेमोरी एंड कीप इट विद यू फॉर अ वेरी वेरी गुड लॉन्ग टाइम. बट टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड ऑलवेज, ये तो याद ही रखना. सो मदर्स डे का शाही लंच एंड डिनर जो भी चूज करे पर डेफिनेटली जाए. लिमिटेड सीट्स है तो रिजर्वेशन जरूर कराए, एंड अभी वो सही वक्त है. पहले से करा के रखेंगे तो सॉर्टेड रहेंगे. shahimaharani.com पर जाए या फिर 6235-8840 पर कॉल करें.

This Gaana, I tell you, seriously, Radio Masti 24/7 live on Tribe ke saath. Yes, this is the morning show. And yes, ladies, I think I have a good tech update for all of you. Koi wardrobe mein jaake kabhi kabhi jaake bata de ki aapke paas kya kya hai. Have you ever heard about something called digital wardrobe? I think that is going to be the next big thing. Now, just imagine this. Aapka phone knows ki aapka wardrobe mein kya kya सामान और क्या क्या चीजें जो है वो रखी हुई है. इट्स लाइक कंप्यूटर, वंस यू फीड इन देन एवरीथिंग इज kind of in there. That's exactly what Google is working in now. Google Photos jo hai, they are going to introduce this new AI powered feature that will basically it's going to turn your camera roll into a digital closet. Matlab jo bhi outfits aapne pehne hue hain, jo photos aapke phone mein saved hain, this tool will automatically scan and identify your clothes. Chahe wo tops or dresses or accessories, so everything gets sorted and organized into categories. So next time jaise hota na kai होता है कि यार ये ब्लैक वाला टॉप कहां रख दिया एंड पूरा हम लोग यू नो ढूंढते रहते हैं. यू कैन लिटरली जस्ट सर्च फॉर इट. बट वेट, इट गेट्स स्मार्टर. नहीं, यहाँ पे खत्म नहीं होता है. यू कैन एक्चुअली मिक्स एंड मैच आउटफिट्स वर्चुअली. यू कैन क्रिएट लुक्स, यू कैन सेव देम, यू कैन इवन बिल्ड योर ओन मूड बोर्ड्स ओवर देयर. मतलब आपका पर्सनल स्टाइलिस्ट सिटिंग राइट इनसाइड योर फोन. और क्या क्या आएगा फोन के अंदर, एवरीथिंग. लाइक कितनी सारी चीजें ऑलरेडी हम फोन के साथ ही मतलब आधी से ज्यादा जिंदगी

0: लाइफ।
1: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 केजी आटा,
2: हाँ जी जी,
1: आधा केजी मसूर दाल,
2: जी जी,
1: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
2: जी जी।
1: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
2: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
1: क्या जी?
2: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप।
1: वाह जी, क्या बात जी।
2: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट।

0: बाजू
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: कितना भी हम गाना गा ले, जाना कहाँ ना हो पता, लॉन्ग वीकेंड के बाद वी ऑल नो हमें कहाँ कहाँ जाना है। फिलहाल अगर आप कहीं जा रहे हैं, चलिए आपको दे देती हूँ इस वक्त और इस घंटे का ट्रैफिक का अपडेट। 9:41 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में। रोड वर्क्स आपको मिलेंगे ऑन PIE टूवर्ड्स चांगी आफ्टर तेंगा बुलेवार्ड, अवॉइड करें लेन नंबर 1। रोड वर्क्स चल रहे हैं ऑन KJE टूवर्ड्स BKE बिफोर संगे तेंगा, सो अवॉइड करें लेन नंबर 4। और रोड वर्क्स चल रहे हैं ऑन PIE टूवर्ड्स चांगी आफ्टर जोरोंग टाउन हॉल रोड, सो अवॉइड करें लेन नंबर 5। So well, that was the traffic update of this hour. Coming up next is kuch ek nostalgia sa gaana, not na retro na 90s, but jab bhi ek gaana play hota hai hamara dil bhi yehi kehta hai ki yaar wo din bhi kya din the. Let's go for it.

सच में जब जब बात करती हूँ एंड रियलाइज करती हूँ दैट वी हैव सीन अ लॉट लाइक क्वाइट अ लॉट एंड इंडिया इज टॉकिंग अबाउट ऑप्टोसैट सैटेलाइट. लेट मी टेल यू द लेटेस्ट अपडेट अबाउट इट. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव. मैं हूँ अनुराग के साथ. दिस इज द मॉर्निंग शो. दिस मॉर्निंग भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है हैज कॉल्ड दिस अ मेजर मेजर अचीवमेंट आफ्टर इंडिया ने जब लॉन्च किया इट्स फर्स्ट ऑप्टोसैट सैटेलाइट अंडर मिशन दृष्टि. नाउ द सैटेलाइट named Drishti was developed by this Bengaluru-based startup Galaxy Eye and launched here aboard SpaceX Falcon 9 rocket from the United States. It is the world's first Optosar satellite, combining radar and optical sensors just to capture high-resolution images in all weather conditions. 190 kg ka ye. It is also India's largest privately built satellite. Ye jo system hai, it allows clearer and more reliable earth observation by merging optical clarity with the radar imaging as well. So PM Modi ne jo hai khud bhi tweet kiya hai, congratulate kiya hai to the team, saying it reflects the innovation and talent of India's youth and their role in nation building. That is correct. Now, when I exactly the same thought, आज से कई सारे साल पहले, yeah, who would have imagined that we would be talking about this like this on radio and stay updated. उस टाइम का रेडियो आज भी है quite evolved in a way, but we are still giving updates and talking about satellites in India का खुद का जो है making space in the space and so much. It's just amazing, isn't it? Radio Masti 24/7 Live पर ऐसा ही हो, ऐसे ही हम अपडेट्स आपको हमेशा देते रहें and ऐसे ही हमारी गाड़ी म्यूजिक की भी and बातों की भी चलती रहे. Radio Masti 24/7 Live पर बस कुछ देर और, लेकिन साथ साथ में चलिए सुनते रहते हैं वो अमेजिंग गाने which makes the whole day in fact better, every single day better. Good morning.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085 6577।

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट
4: Authentic, original, and better than our rivals.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे
2: दिल टूट जाए या चार्जर गुम हो जाए, मम्मा सब संभाल लेती है।
3: जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ।
2: This Mother's Day, give her the royal treatment she truly deserves with a majestic Mother's Day celebration, Shahi Mahar Rani. Choose from a lavish lunch buffet or a special a la carte dinner experience on Sunday, 10th May. From tandoori delights to maki dal to kulfi pops and jalebis. All this at just $62 plus per adult and $42 plus per child. Plus, every mom receives a complimentary jar of gulab jamun or namak pare and a special photo card to capture the memory. Shahi lunch and dinner at Shahi Maharani Raffles City. Limited seats. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions applied.
4: ये रात तो अपनी है, पर एक ख्याल किसका है?
5: तुमको लेकर
4: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
5: मुझे चांद पे ले चलो।
4: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे। ट्यून इन टू
5: रात।

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: ना पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें। Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beer.

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: ओके, अ क्विक क्वेश्चन, सिंगापुर की गर्मी ज्यादा हॉट है या मेरा ये नया प्लेलिस्ट? हाय, हेलो एवरीबॉडी, मस्ती हैंग आउट पर आपका स्वागत है। दिस इज मी आपके मुग्धा, कमिंग टू यू लाइव फ्रॉम द लाइन सिटी टू आपके रेडियो सेट्स पर सुनने के लिए, ताकि आप एंजॉय करें। मुझे सबसे पहले मेरा पूरे दिल से आप सभी को सलाम, नमस्ते, एंड अ वेरी मैसिव हेलो टू आवर ग्लोबल फैमिली, क्योंकि आप मुझे ऐप पर भी सुन सकते हैं। अब अगर आपके दिमाग दिल में कहीं भी ये सवाल आ रहा है कि मुग्धा तुम कहाँ थी, अगर आपने मुझे मिस किया, अगर किसी के दिमाग में सवाल आया तो उसका जवाब देना बनता है, तो उसका जवाब ये है कि हाय गर्मी मुझे लग गई। Well, क्या है ना कि आगे बढ़ते हैं, जो बीत गई सो बात गई, मैं आ गई हूं तो बस बात खत्म हो जाती है। और आज क्या है? आज है 4th of May, May the 4th be with you। वाओ, सही है ना? स्टार वॉर फैंस होंगे तो आप समझ जाएंगे। या आई सी यू। पर यहाँ पे आती है मुग्धा की इंटेलिजेंस कैप्सूल। डिड यू नो कि दिस पन वॉज एक्चुअली क्रिएटेड बाय अ यूके पॉलिटिकल पार्टी 1979 में फॉर मार्गरेट थैचर। मूवी डायलॉग उससे पहले एक विक्ट्री साइन था, समझ रहे हैं? माइंड ब्लोइंग। मेरे पास रहेंगे तो ऐसे नॉलेजेस आपको मिलते रहेंगे, देखा? अदरवाइज आप तो यही सोच के बैठे रहते कि ये तो एक मूवी का डायलॉग था, मे द फोर्थ बी विथ यू। पर ऑन अ रियल नोट, इट इज ऑल्सो इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। वाओ, अ सल्यूट टू ऑल ऑफ देम। जब हम इंजॉय करते हैं ना अपनी मॉर्निंग कॉफी घर में, सम हीरोज आर लिटरली

तो कुल मिलाकर के मंडे ब्लूज को मारो गोली, लेट्स डाइव इनटू द हेडलाइंस जो कि एक्चुअली मैटर करती है. स्टे ट्यून्ड बिकॉज मस्ती हैंग आउट स्टार्ट्स नाउ. जोश में रहो. दिस इज

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: और हम वापस आ गए हैं, आप सुन रहे हैं मस्ती हैंग आउट मुग्धा के साथ। ग्लोबल फैमिली अभी अभी ना स्टूडियो की खिड़की से मैं बाहर देख रही थी और मुझे हर जगह दूर दूर तक स्काई स्क्रैपर्स दिख रहे थे। इट्स ब्यूटीफुल। पर मैं सोच रही थी, क्या आपने कभी सिंगापुर में किसी गांव या किसी शहर के बारे में सुना है? नो। सो माय इंटेलिजेंस कैप्सूल जो कि आफ्टर फीलिंग हॉट कीज छुट्टी के बाद में लेकर के आई हूँ, वो खुल चुकी है। और उसको खोलते ही बिलीव इट और नॉट मुझे पता लगा, सिंगापुर इज ऑफिशियली द ओनली कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड जहां पे एक भी गांव नहीं है। तो हम कभी नहीं कह सकते कि वो नॉस्टैल्जिया फीलिंग गांव वाली हम महसूस करेंगे, नहीं, बिकॉज यहाँ कोई गांव है नहीं, जीरो, खत्म। टेक्निकली हम 100% अर्बनाइज्ड हैं। खुश भी होना चाहिए इसी बात पे। एक्चुअली 1970s तक ना यहाँ पे 200 से ज्यादा विलेजेस हुआ करते थे जिन्हें कि हम लोकल भाषा में कहते थे कैंपोंग, अभी भी कहते हैं, पर आज नो, सब गायब हो गए, बस एक आखिरी बचा है। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपको उसका नाम बताऊंगी, तो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो आप मुझे बताएंगे। मैं भी तो जानूं कि आप सिंगापुर के बारे में कितना जानते हैं। 9151893 पर मुझे सवाल का जवाब दीजिए कि आखिरी बचा एक जो विलेज है सिंगापुर का, वो क्या है। हिंट ये है कि आप ये जान लीजिए कि अब वो एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। चलिए, शॉकिंग बात तो है वैसे कि जहां पे पूरा मुल्क एक सिटी है, आप जहां से भी सुन रहे हैं, आप मुझे, आप लंदन में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे दुबई में हो, आप ये जान लीजिए कि सिंगापुर में कोई गांव नहीं है। सिंगापुर इज ऑल अर्बनाइज्ड, समझ रहे हैं। और साथ ही मुझे बताइए कि इकलौता जो बचा है वो कौन सा गांव है। 9151893 पर मैं वापस आऊंगी एक और खबर के साथ।

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। Only on Masti Hangout with RJ Mugdha, Radio Masti 24/7 Live. Radio Masti 24/7 Live.
1: वापस आ गई हूँ मैं मस्ती हैंगआउट पर आपके मुग्धा। दोस्तों संडे जो है ना मई 10th वो बहुत स्पेशल है। व्हाई? डीपीज चेंज हो जाएंगे उस दिन। मदर्स डे है। ऑनेस्टली मदर्स लाइक शी डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड लाइक अ क्वीन ऑलवेज। पर रैफल सिटी में जो शाही महारानी है ना, जो हमारे हर मौके को खासम खास बनाता है, उन्होंने अगेन कुछ बहुत ही खास सोचा है। एक बहुत ही ग्रैंड मैजेस्टिक मदर्स डे बुफे है जिसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, एंड दैट्स गोना बी ग्रेट। अगर आप मेन्यू के बारे में सोच रहे हैं तो इट्स ऑप्यूलेंट। हम बात कर रहे हैं कीमा पाव, नो टिक्की छोले, यस, चाट, स्मोकी तंदूरी फिश टिक्का, माय गॉड, एंड देन कम्स द मेन कोर्स, उनका सिग्नेचर कंफर्टिंग माह की दाल। माह की दाल होता है एक्चुअली वो। हाँ, डेजर्ट में दो फ्रेश जलेबीज एंड कुल्फी पॉप्स। अरे भाई मैं क्या बताऊं आपको। नाउ देयर इज अ लंच बुफे एंड देन देयर इज अ स्पेशल ट्रीट फॉर ऑल द मदर्स, देयर इज अ डिनर आल्सो। आपके ओकेजन को और स्वीट बनाने के लिए हर एक मदर के लिए एक बहुत ही हार्टफेल्ट गिफ्ट है। But just let me tell you, it's all with a terms and conditions apply. Ye aap dhyan mein rakhega. A jar of our very homemade savory namak pares. And all of them are very lovingly prepared by our chefs. Aur ye ek tarah se token of gratitude hai aur affection hai. And a photo card to remember this special day. This is also on May of 10th, 2026. Dinner hai shaam 6:30 se 10:30 tak. Till the last order. And complimentary gift jo hai wo limited hai to 2 per table. Terms and conditions apply. Wild stock last. To please aap is baat ko dhyan mein rakhega. To kul mila ke dekho, Shahi Maharani humne hamesha koshish karte hai hamare har ek special din ko aur special banane ki. Lunch buffet is $62 plus per adult and $42 plus per kid. Agar dekhe to seats bahut limited hai, to call kar lijiye 6235-8840. या फिर आप इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, दैट इज shahimaharani.com. अगेन मैं एक बात आपको बता देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट्स लिमिटेड हैं, 2 पर टेबल, वाइल्ड स्टॉक्स लास्ट। फिलहाल तो मदर्स डे इज गोना बी ग्रेट फॉर ऑल द मदर्स। शाही महारानी का कमाल है ये। स्टे ट्यून्ड।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जीजी, जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: नाचने का मन है मेरा भी आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकाज्म मिलेगा। Only on Musti Hangout with RJ Mugdha. Radio Musti 24/7 Live. Radio Musti 24/7
4: Live. Hey, चलिए अब थोड़ी हम ट्रैवल की बात कर लेते हैं। वेलकम बैक। अगर आप सिंगापुर में हैं तो जेबी सब जानते हैं, जेबी वहां पे जाना हमारा एक कह सकते हैं कि बिल्कुल सही बात है, नेशनल हॉबी जैसा हो गया, राइट? संडे इवनिंग का बॉर्डर ट्रैफिक कैसे भूल सकते हैं, जिनके जिनके हॉबी है उनको पता होगा ये कितना भयानक होता है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा रिलीफ आ रहा है, गवर्नमेंट ने ना क्रॉस बॉर्डर टैक्सी सर्विसेज को इनहांस कर दिया है। अब पॉइंट टू पॉइंट सर्विस और भी ज्यादा सीमलेस होने वाली है। सो माय इंटेलिजेंस कैप्सूल जो है वो ये बता रहा है कि अब टैक्सी ड्राइवर्स पैसेंजर्स को सिंगापुर या जेबी में कहीं भी ड्रॉप कर पाएंगे। यस, पहले क्या था, पहले ना रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा थी, पर अब ट्रांसपोर्ट हब्स को बाहर भी ड्रॉपिंग अलाउ होगी। का मतलब, अरे नो मोर लगिंग हैवी बैग्स यार, समझ रहे हो ना, कॉजवे अक्रॉस द कॉजवे जो बड़ा बड़ा जाम लग जाता है वो नहीं होगा। ये उन सब के लिए इट्स गोना बी गेम चेंजर जो शॉपिंग या सस्ते पेट्रोल के लिए बॉर्डर क्रॉस करते हैं। यस, ट्रैवल इजी हो गया है। काश आप रेडियो पर देख पाते, माय एक्सप्रेशंस आर सुपर क्लासी। फिलहाल मूड को बनाते हैं ब्रेजी कुछ आने वाले गानों के साथ, एंड देन वी विल बी एंटरिंग इनटू द सेकंड आवर ऑफ द शो ऑफिशियली। स्टे ट्यून्ड।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। वेलकम हमारे शो के दूसरे आवर में। जी हाँ, यहाँ से माहौल थोड़ा सा बदलने वाला है क्योंकि हम एंटर कर रहे हैं बॉलीवुड जंक्शन में, क्योंकि यहाँ पे बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की बातें होती हैं। मुग्धा के साथ आप सुन रहे हैं मस्ती हैंग आउट और अब बात होगी सिर्फ लाइट्स कैमरा एक्शन और स्पाइसी गॉसिप्स एंड रूमर्स की, जो कि इंटरनेट पर आग लगा रहे हैं इतनी गर्मी में। बताओ जरा, आग में घी का काम। खैर डियर फ्रेंड्स, तुम्बार जो है वो सबको याद है, याद है ना? वही फिल्म जिसने हॉरर का एक्चुअली डेफिनेशन ही बदल दिया था। वेल, तुम्बार 2 इज ऑफिशियली गेटिंग बिगर। क्यों? लेटेस्ट रिपोर्ट्स जो है वो सामने आ रही हैं, ये पता लगा रही हैं, मतलब बता रही हैं कि हमारी अल्फा गर्ल जो है आलिया भट्ट इज सीक्वल में बहुत ही इम्पैक्टफुल स्पेशल अपीयरेंस करने वाली है। मतलब सोहम शाह और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो पहले ही अपना कंफर्मेशन दे चुके हैं, आलिया का नाम जैसे ही इसके साथ जुड़ा है, इसके स्टेक्स जो है इट्स गोना बी स्काई हाई। कहा जा रहा है कि आलिया की एंट्री एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगी फिल्म में। क्यों? वो ही है क्या मेन? पता है ना कौन आता है तुम्बार में? Well, she starts shooting on May 3rd. Already had started actually. And उसके बाद वो Met Gala के लिए चली जाएंगी। एक ग्लोबल सुपरस्टार हो चुकी हैं, उनके तो अपने स्केड्यूल्स हैं, राइट? नवाज भाई और आलिया जो है एक ही फिल्म में आएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि दो पावर पैक्ड परफॉर्मेंसेज आपको एक ही फिल्म में दिखाई देने वाली है। एक्साइटमेंट तो अभी हैंडल नहीं हो रहा, पिक्चर में कैसे हैंडल करेंगे? आपको क्या लगता है आलिया का रोल क्या होगा? अस्तर वही तो नहीं है या हस्तर की मिस्ट्री को वो सॉल्व करेंगी? क्या पता वो फिल्म में स्त्री हो जो सारा रहस्य सुलझा ले, हो सकता है।
1: होली होली गिद्दे विच नच बदलो नी तेरा लक ना मरोड़ा खा जा।
0: फिलहाल के लिए एक ब्रेक लेते हैं, आप सुन रहे मुग्धा को, आई विल बी राइट बैक।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाय, वेलकम बैक। अब हम आते हैं कैसी खबर पे जिसने पूरे फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। पता है ऑस्कर्स जो है वो अपने रूल्स बदल रहे हैं, यानी ऑस्कर के रूल्स बदल चुके हैं, एक ही बात है। और ये खबर मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इंडिया के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है। इंडिया बोले तो बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, हमारे यहाँ से जाने वाली हर मूवी, हर फिल्म जो कि एंट्री लेती है वहाँ पे। मेरी इंटेलिजेंस कैप्सूल जो कि मुझे इन छुट्टियों के बाद फ्री मिली है, हर बार यूज करती हूँ मैं उसको। पता है क्या होता था पहले, उसने बताया मुझे, इंडिया सिर्फ एक ऑफिशियल एंट्री भेज सकता था, यहाँ से जा सकती थी फॉर बेस्ट इंटरनेशनल फीचर। अगर सिलेक्शन कमिटी ने आपकी फिल्म नहीं भेजी, गेम ओवर। बट नाउ एकेडमी सेज नो मोर रिस्ट्रिक्शंस। अब अगर कोई नॉन इंग्लिश फिल्म किसी मेजर इंटरनेशनल फेस्टिवल जैसे कि कांस या बर्लिन या बुसान में टॉप अवार्ड जीती है, वो सीधा क्वालिफाई हो जाएगी फॉर द ऑस्कर्स। इसका मतलब एक ही साल में इंडिया से दो या तीन फिल्म्स भी नॉमिनेट हो सकती है। यो, दैट्स गोना बी अ प्राउड वाइफ। और पता है एक टच मी नॉट फैक्ट, अब ट्रॉफी ना कंट्री को नहीं सीधा डायरेक्टर को मिलेगी। डायरेक्टर का नाम जो है वो ट्रॉफी पर होगा, प्लेक पर होगा, और इट्स गोना बी ऑल अबाउट द क्रिएटर नाउ, नॉट जस्ट द फ्लैग। हमारी जो इंडस्ट्री है ना उसके लिए कितना बड़ा चांस है ये, जस्ट कैन यू इमेजिन। 2027 के जो ऑस्कर्स हैं बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं इस बार, क्योंकि ये जो है इट्स गोना बी गेम चेंजर। सो व्हाट यू थिंक, व्हिच इंडियन डायरेक्टर विल बी द फर्स्ट वन टू लिफ्ट द ट्रॉफी अंडर दीज न्यू रूल्स? अगर आपको कोई भी आइडिया तो मुझे जरूर

0: मुझे तो लगता है कई पुरानी फिल्म्स को भी रीनॉमिनेट करने का मौका मिलना चाहिए, बिकॉज कितनी ऐसी हैं जो बेचारी ये मौके से चूक गई, है ना? Right.
1: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore.
2: Check it out.

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ओके हैंड्स अप, किसके घर में मैंगो सीजन का वेट दिवाली से भी ज्यादा होता है? I'm really sure हर इंडियन घर, इनफैक्ट हर घर में होता होगा। सो इट्स फाइनली हियर, जीटी मार्ट इज ब्रिंगिंग यू द एब्सोल्यूट बेस्टेस्ट देवगढ़ अल्फांसो एंड रत्नागिरी अल्फांसो, सीधा फार्म से आपके डोरस्टेप पर इन सिंगापुर। कोई बीच में उसको छूने टोकने वाला नहीं है। और सुनिए, आई हैव गॉट अ वेरी मैसिव डील फॉर यू। ggmartonline.com पे जाइए एंड यूज द कोड न्यू10। न्यू10, न्यूटन से याद रखना, न्यूटन, न्यूटन। न्यूटन ने क्या इन्वेंट किया था? चलो छोड़ो, भूल जाओगे आप।

कोड याद रखो, न्यू 10 ऑल इन कैप्स. Yes, this new 10, आप इसको जैसे अप्लाई करोगे इंस्टेंट 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा. मैं तो कहती हूँ भाई साहब स्टॉक अप कर लो फटाफट से, क्योंकि ये डिस्काउंट हर किसी को हर जगह नहीं मिलता है, सिर्फ जीजी मार्ट पर मिल रहा है. एक और सीक्रेट टिप है आपके लिए, यू नो व्हाट, रजिस्टर ऑन द वेबसाइट राइट नाउ जीजी मार्ट की. एक स्क्रीनशॉट ले लो ऑफ योर रजिस्ट्रेशन एंड सेंड इट वाया व्हाट्सएप ऑन आवर नंबर, दैट इज 9151896 3. एक प्रमोशनल ऑफर है, इसको बिल्कुल मिस ना करें तो बनता है. सो रत्नागिरी इज $35 पर बॉक्स एंड देवगढ़ इज $39 पर बॉक्स, प्लस $70 के ऊपर अगर आप करते हैं ऑर्डर तो इट्स गोना बी अ फ्री डिलीवरी. कोड याद रखना, न्यू 10, न्यू 10, न्यू 10. अलार्म लगा लो, न्यू 10, न्यू 10. रिंगटोन लगा लो, न्यू 10, न्यू 10. मेरा सर दर्द हो रहा है. वेल, मैंगो सीजन है बॉस, इंडल्ज करना.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही

0: जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: वेलकम बैक टू बॉलीवुड बेबी, मतलब एंटरटेनमेंट। अब थोड़ा ग्लोबल गॉसिप पे बात करें। सो बेसिकली हम शिफ्ट हो जाते हैं फ्रॉम बॉलीवुड टू हॉलीवुड, बिकॉज द क्वीन हरसेल्फ हैज स्पोकन। हम बात कर रहे हैं द लेजेंड मेरिल स्ट्रीप की। दोस्तों, द डेविल वर्सेस प्राडा 2 की जो एक्साइटमेंट है वो तो पहले से ही काफी स्काई हाई थी, पर अब एक वायरल डिबेट शुरू हो गई है। सो बेसिकली इसका पिक्चर से कोई लेना देना है नहीं, इट्स ऑल अबाउट द डिबेट। इंटरनेट पर रिपोर्ट्स क्लेम कर रही हैं कि मेरिल ने मार्वल स्टूडियोज पर एक एक्सप्लोसिव ड्राइव लिया है। कहा जा रहा है कि मेरिल बिलीव्स एक्चुअली स्टोरी टेलिंग CGI और सुपर हीरोज के पीछे आज के जमाने में कहीं पे खो सी गई हैं। ओह रियली? दो उनका ये जो पूरा इंस्टेंस रहा है, उनका जो थॉट रहा है, मतलब काफी पुराना रहा है कह सकते हैं। दो ये उनका पुराना स्टैंस रहा है, बट राइट नाउ फैंस आर लाइक वेरी मच डिवाइडेड। कुछ कह रहे हैं कि या शी इज राइट, एंड मार्वल फैंस वो बोल रहे हैं एवरीवन लव्स अ ब्लॉकबस्टर, और नहीं तो क्या। आयरन मैन मरा तो हम सब कितना रोए थे, मैं तो बर्गर खा के रोई थी। मेरा यस इंटेलिजेंस कैप्सूल बाहर आ गया है, टिंग टोंग। उसने कहा, डिड यू नो कि ओरिजिनल मूवी में मिरांडा प्रेस्ली का कैरेक्टर एक्चुअली एना से इंस्पायर था? यस, एना विंटर। अब सीक्वल में मिरांडा को फास्ट चेंजिंग डिजिटल मीडिया और शायद सुपर हीरो कल्चर से डील करते हुए देखना एक्चुअली काफी फन होगा। आप किसकी टीम में हैं, मिरांडा या मार्वल? मुझे दोनों चाहिए, मेरे पास दो हाथ हैं, तो मैं दोनों को एक एक में ले सकती हूँ। आई एम इस हाथ से मिरांडा, इस हाथ से मार्वल। एक फिल्म बनाते हैं जिसमें दोनों हो जाएं, क्या बात है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, क्या पता यही फिल्म हमारे लिए ऑस्कर्स ले आए।
2: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever-buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore.

0: Oh, I hate making love songs.
1: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकाज़म मिलेगा. Only on Masti Hangout with RJ Mugdha. Radio Masti 24/7 Live. Radio Masti 24/7
2: Live. मैं जादूगर, मेरा नाम गोगा. नहीं, मैं गोगा तो नहीं हूँ, पर मैं मुग्धा जरूर हूँ. Hello, welcome back. शो के थर्ड एंड द लास्ट आवर में आपका स्वागत है. आपको याद है अभी हम जाने से पहले लास्ट आवर में मार्वल की बात कर रहे थे, मार्वल फैंस. तो देखो मुझे क्या मिला. एलन मस्क को साइड में रख देते फिलहाल, हटाओ. एक और है एलेक्स. एलेक्स बर्किन इज द रियल टोनी स्टार्क राइट नाउ. समझ रहे कहाँ है. रशिया के इंजीनियर ने एक ऐसी आयरन मैन सूट बनाई है जो कि एक्चुअली एक हाइड्रोजन रिएक्टर पे चलती है. एंड दिस इज नो जोक, नोबडी इज किडिंग राइट नाउ. ये सूट 1000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा की हीट जनरेट करती है और लंबी फ्लेम्स खुद ही प्रोड्यूस कर सकती है. जूम जूम जूम जूम जूम. आया मेरा इंटेलिजेंस कैप्सूल. इस सूट ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीत लिया है फॉर द फर्स्ट फंक्शनल सूट माउंटेड लाइटसेबर. टोनी स्टार्क को ना जार्विस मिला था, एलेक्स को सिर्फ पुराने पार्ट्स और बहुत सारी हाइड्रोजन मिली, पर कहां से मिली. Well, sarcasm all aside, ये सूट अभी फ्लाई तो नहीं कर सकती, बट इट कैन एक्चुअली शूट फ्लेम्स. स्पाइडरमैन को भाई मिल गया, मतलब अवेंजर्स असेंबल होना हो, बारबेक्यू पार्टी तो बन सकती है, है ना. अगर ऐसे सूट में ऑफिस जाना चाहेंगे आप तो कैसा लगेगा. क्या आप जाना चाहेंगे. ट्रैफिक प्रॉब्लम इज गोना बी सॉल्व्ड.

0: जी बना लेते, ठीक है? आई नो.
1: दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, द ओनली लोकल कनेक्ट विद ग्लोबल एक्सपर्ट इंडियंस. एनीटाइम, एनीवेयर.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: वेल, मुझे लगा जब मार्वल की बात करी है तो हाउ कैन वी इवन फॉरगेट दिस, व्हाट वाज दैट, मेरिल एंड द फैशन एंड ऑल दैट प्राडास। Okay, so if you think that just you have a hard time picking an outfit, subah-subah utke, spare a thought for this lobster from Cape Cod. Scientists are like losing it over a very rare split-colored lobster. Ek side se it's bright orange and ek side se it's jet black. Literally, aisa lag raha hai, ek printer iske upar se nikal gaya aadha-aadha. Ek taraf kala, ek taraf orange. निकल गया है मेरा कैप्सूल। पता है लॉजिक क्या है? इसके होने के चांसेस ना 50 मिलियंस में एक होते हैं। ये कोई फोटोशॉप नहीं है जैसे कहा जाए तो। जस्ट अ वेरी वेरी वेरी वेरी रेयर जेनेटिक म्यूटेशन। क्या बात है, बेचारे को समझ ही नहीं आ रहा कि हॉलोवीन पार्टी में जाया जाए या फिर नॉर्मल डिनर प्लेटर पे। ऑनेस्टली इट्स गिविंग अ वेरी मेजर टू फेस्ड वाइब। बैटमैन वाला, बैटमैन असेंबल होना हो, लॉबस्टर डेफिनेटली हाफ बेक तो है ही। नेचर इज वियर्ड गाइस, एंड सो एम आई बिहेविंग टुडे। ऐसा लग रहा है इस हॉट वाली छुट्टी के बाद ना मेरा दिमाग खुल गया है। इंटेलिजेंस कैप्सूल में नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा आपको मेरी बात। ऐसी और अपडेट्स के लिए सुनते रहिए मुझे।

Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space. Dear मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

कोई बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। हाय, एक बात बताऊं, हम सब ना दिन में एक दो बार तो भूल ही जाते हैं ना। मैं इस रूम में आई थी, क्यों आई थी, ऐसी चीजें है ना, राइट? हम अपनी गोल्डफिश मेमोरी जो है उस पर रोते रहते हैं। आपको नहीं पता व्हाट इज अ गोल्डफिश मेमोरी, चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन आज अपनी इस भूलने वाली आदत को आप थैंक यू बोल लीजिए। क्यों? मैं आपको मिलाती हूँ क्लाइव। क्लाइव वियरिंग यूके के हैं। इनका मेमोरी स्पैन पता है क्या है? 7 सेकंड्स का। जी, 7 सेकंड्स एंड ज़िप रीबूट। हर 7 सेकंड बाद इनका दिमाग रिफ्रेश हो जाता है और उनको लगता है कि वो अभी अभी होश में आए हैं और अभी तक वो बेहोश थे। लिटरली रियल लाइफ गजनी वाइब्स, बट एक्चुअली इट्स वेरी वे मोर इंटेंस। मेरी इंटेलिजेंस कैप्सूल ने मुझे अभी भी बिना ज्यादा शोर किए बताया है कि 1985 में ना उन्हें एक ब्रेन इन्फेक्शन हुआ था। लेकिन सबसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट पता है क्या है? वो अपनी पूरी लाइफ भूल चुके हैं, पर अपना पियानो बजाना और अपनी वाइफ डेबरा को पहचानना नहीं भूले। मसल मेमोरी और ट्रू लव, इसका इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल चाहिए आपको? सुना देना ये बात जाके अपने

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: ध्यान टन। और इसी के साथ पता ही नहीं चला, मतलब पता ही नहीं चला कि ये जो 3 घंटे का शो था वो कहाँ खत्म हो गया। नहीं खत्म तो ये हुआ, कैसे खत्म हो गया मतलब। वैसे हैंग आउट का ये मॉन्डे एडिशन जो है वो एब्सोल्युटली ब्लॉकबस्टर था मेरे लिए, बिकॉज मैं इतने दिन के बाद आपसे मिली हूँ एंड उसके बाद एक ऐसे रिज्यूविनेशन फीलिंग आ रही है। और मुझे लगता है ना कि कभी कभी अपने दिमाग को रीसेट करने के लिए उसको थोड़ा पॉज मोड पर डालना चाहिए। एंड दिमाग की बात की तो मुझे वो अंकल याद आ गए जिनका दिमाग हर 7 सेकंड में रिफ्रेश हो जाता है। खैर कितनी सारी बातें कर ली हम।

नए नए आने वाले इवेंट्स। अगर आपने कुछ मिस किया तो प्लीज क्लाइव की तरह अपनी 7 सेकंड मेमोरी को ना बिल्कुल दोष मत देना। क्लाइव को देख कह सकती हूँ आपको तो पता था कि मैं आ रही हूँ, फिर आप क्यों नहीं आए टाइम पे। नोट किया करो सब, पेन पेपर लेके बढ़ा करो मेरा शो सुनने के लिए। हमारी ऐप भी जाया करो, रेडियो मसी 24/7 लाइव सिंगापुर। हमारा जो ऐप है ना बड़ा ढिंचैक है और उस लॉबस्टर की तरह बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होता। डेविल वर्सेस प्राडा की तरह झिंटैक है हमारा ऐप, एकदम देखना कभी जाके। वेल अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए क्योंकि अब अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। कीप स्माइलिंग, हमेशा याद रखिए कि योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। मैं आपसे मिलूंगी अगले शो में, दिस टाइम मुग्धा साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस लाइन सिटी। टाटा बाय बाय एंड स्टे फैबुलस। मुझे बताते रहिए कि जो इकलौता गांव बचा है सिंगापुर में उसका नाम क्या है। 9151896 3 पर।

0: disco. Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: मजार-ए-शरीफ में 2 महीने बाद एक निकाह हो रहा है। उनके निकाह में एक ऐसा आदमी आ रहा है

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट।
4: एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में। वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे। Not all music is loud. Some songs just sneak in. What makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged. Your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.
2: ये रात तो अपनी है, पर एक ख्याल किसका है?
3: तुमको लेकर
2: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
4: मुझे चांद पहले चलो,
2: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे। ट्यून इन टू

0: सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

नहीं रहना, मुझे घर पे नहीं रहना, आज तेरे नाल मेरी सारी शाम गुजरनी नहीं, आज मुझे दुनिया की सुननी, मुझे तो है बस अपनी ही करनी। असली सो।

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10 का 20।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musty Top 20, only on Radio Musty 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009. Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats.

0: पहुंचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.
3: चेक इट आउट.

Hey, you got what I want, it's Sony, yeah.

0: आएंगे
1: न करण अर्जुन आएंगे न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे
2: सिंगापुर। बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
3: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
2: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
3: तो सिंगापुर, गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
2: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।
4: Some shows don't just play, they stay with you. And when our listeners ask for more, we bring them back. Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for Encore show timings.
5: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं। Presenting the encore of your favorite shows. Another day, another time. For your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live. A part of Musti Media Network Singapore.
2: Monday Blues. Not on our watch. Wake up to world news, fresh updates और थोड़ा Bollywood का मजा भी। Make your Mondays matter with the morning show with Renuka, 7 a.m. onwards.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
3: Check it out. Josh
4: mera अर्जुन आएंगे
0: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।
2: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन। फ्रेशली ब्रूड बीट्स

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट।

0: डिजिट तुम ही हो. मस्ती वॉइस आपकी चॉइस. यू से वी प्ले. बड़े बड़े हिट सुनो.
1: ऐसा लगने लगा है मुझे कि व्हाट्सएप के जो टेक्स्ट है ना वो मैं सुन पा रही हूँ. लाइक किसी ने ऑडियो नोट नहीं भेजा है लेकिन जिस हिसाब से कभी कभी लोग लिखते हैं ना तो मुझे ना अचानक से ऐसा लगता है कि इट्स काइंड ऑफ प्लेइंग इन माय इयर्स उन्हीं की आवाज में. सपना आंटी अभी आपने लिखा अंतरा, वो इतने एयर्स डाले आपने उसके पीछे, मेरे को चीरती हुई आपकी आवाज आई कि आ गई तुम, वापस से आ गई मैं, देखो मैं वापस से आ गई. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव. गुड इवनिंग, नमस्ते. यस, इट्स मंडे इवनिंग. एंड मंडे इवनिंग देखो ये वाला तो मेरा अपना ही शो है, ठीक है. ये वाला मेरा अपना ही काम है जो मैं बिल्कुल करने पहुंच चुकी हूँ. यस, सुबह मुलाकात हुई थी द मॉर्निंग शो में. देखो भाई, यूजुअली मैं आगे बताती हूँ कि इट्स बीन अ लॉन्ग डे, ठीक है. बट देन यू नो व्हाट, मेरे को ना इसमें भी कुछ अच्छा सा मिल गया. वो ये है कि क्या होता है कि जिस दिन मेरे को ना मॉर्निंग शो करने को कहा जाता है, एक तो बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है मॉर्निंग शो करना, तो वो कर करा के सारी जो अपडेट्स वाली बातें है ना तो वो सुबह हो जाती है. तो बाय द टाइम ये शाम का टाइम आता है ना तो फिर अपन एकदम मस्त हो जाते हैं कि देखो, एक तो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस है, ठीक है, आपकी चॉइस के गाने चलाऊंगी, आपका मूड अच्छा, यहाँ पर बाकी सारी बातें होंगी जो मैंने सुबह नहीं की थी, तो मेरा भी मूड हल्का और अच्छा है ना, मतलब कमाल ही हो गया. नहीं मैंने ये, दिस इज एक्चुअली नाइस. ओह गॉड. तो भाई बात कुछ ऐसी है कि हमारा सिलसिला जो है बिल्कुल यहाँ पे शुरू कर देते हैं. आप सोच विचार कर लीजिए क्योंकि अभी तो 3 घंटे हमारे पास, राइट. आप सोचिए कि आपको कौन सा गाना रिक्वेस्ट करना है. 9151896 जो है नंबर है वहां पे भेज दीजिए. हम लोग अच्छे अच्छे गाने सुनाएंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, मुस्कुराएंगे, गाएंगे, गुनगुनाएंगे, ऐश करेंगे और क्या. गुड इवनिंग.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए, ऑर्गेनिक केमिकल फ्री स्ट्रेट फ्रॉम देवघर रत्नागिरी एंड मोर नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।
2: बजते ही नाचना जरूरी है। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले।
3: सारी दुनिया एक तरफ और इंडिया में चल रही बंगाल की वोटिंग एक तरफ, भाई आज तो रिजल्ट आने वाले हैं, काउंटिंग चल रही है, क्या ही होगा पता नहीं। 5:00 हो चुके हैं, 18 मिनट यहाँ पर रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, मैं हूँ अत्रा आपके साथ और चल रहा है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस। तो भाई जो जो जैसा जैसा होगा वैसा वैसा आपको पता चलता जाएगा, बट इट इज डेफिनेटली बिकॉज दे आर ऑल्सो मेकिंग यूज ऑफ द सोशल मीडिया कम्प्लीटली। एंड अभी बस थोड़ी देर पहले जो है ममता बनर्जी का जो है एक बड़ा ही वीडियो वायरल फिलहाल हो रहा है, वेयर शी सेइंग कि ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है, उन्होंने ऐसा कर दिया है। सो वेल या इट इज अनदर लेवल का एंटरटेनमेंट जो है वहां पर भी चल रहा है। बट कमिंग बैक टू भाई, आईपीएल में भी कोई कम एंटरटेनमेंट नहीं चल रहा है बाय द वे, क्योंकि वहां पर भी ऐसे ऐसे बीच बीच में ऐसे क्लेम्स आने लगते हैं कि आपको लगता है कि ये किसने किसने सोच लिया होगा। सो अपेरेंटली सो वी ऑल नो अबाउट दिस 15 साल का लड़का वैभव सूर्यवंशी, ही इज प्लेइंग फॉर राजस्थान रॉयल्स एंड ही इज जस्ट अमेजिंग। इतना लाइक बच्चा भर का लड़का, उसने मतलब सबको दौड़ा रखा है हर जगह पे, ऐसे ऐसे छक्के मार रहा है, बुमराह के छक्के उड़ा रहा है सबके, लाइक ही इज जस्ट अमेजिंग राइट। एंड व्हेन समबडी इज अमेजिंग देयर आर पीपल हु विल से कि एआई है नहीं एआई नहीं है, बट कुछ लोगों ने उसको बोला कि इसके ना बैट में चिप लगा हुआ है, हाँ, और इसीलिए उसके ना हमेशा छक्के पड़ते रहते हैं। आई मीन या सो बेसिकली वैभव सूर्यवंशी से पूछा गया कि बच्चे बताओ भाई, कितने सारे लोग क्लेम कर रहे हैं कि एआई चिप यूज करते हो आप अपनी बैट में टू एलिवेट द पावर हिटिंग एंड ऑल। बड़ा सही से जवाब दिया उसने, उसने कहा भगवान ने लगा के दिया है सर, ऊपर ही बोल दिया था कि बैट में तुम्हारे कुछ लगा के दे रहा हूं, उसी का इस्तेमाल कर रहा हूं। आई मीन ब्रो क्यूट है यार, वो बहुत ही क्यूट है। अभी हाल ही में जब इनका मैच हुआ था तो देयर वाज दिस मोमेंट व्हिच आई आल्सो पोस्टेड हमारे फेसबुक पेज पर, यू नो जब वो अपने फील्डिंग के उसमें पास में आए ना उस रोप के, तो लोग उनके फैंस जो है गाना गाने लगे बिहारी में भोजपुरी गाना गाने लगे एंड ही स्टार्टेड स्माइलिंग। सो या आई थिंक जवाब तो बहुत ही सही दिया और एकदम ऐसा ही देना चाहिए था, क्या कहते हो, एकदम लेट्स नाचो वाला जवाब था। रेडियो बस्ती 24/7 लाइव पर कमिंग अप नेक्स्ट इज दिस गाना एंड मोर, सो आप यहीं पर रहिए हमारे साथ।

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट
2: भाई, चलिए लेते हैं यहाँ पर ट्रैफिक का अपडेट। छैया छैया ना, बिल्कुल छैया छैया नहीं करते हुए, आराम से चलते हुए, आराम से गाड़ी चलाते हुए, क्योंकि मिलेगा आपको हेवी ट्रैफिक इस वक्त ऑन AYE टुवर्ड्स उत्वास एट क्लेमेंटी एवेन्यू 6 एग्जिट। हेवी ट्रैफिक की खबर ऑन ECP टुवर्ड्स चांगी बिटवीन PIE एंड बेशोर रोड, और मिलेगा हेवी ट्रैफिक ऑन BKE टुवर्ड्स अगर आप जा रहे हैं वुडलैंड्स एट SLE एग्जिट। सो वेल, ये था ट्रैफिक अपडेट इस घंटे का। 5:32 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में, मंडे, बट इट्स मंडे इवनिंग, सो हम ढींका चिका कर सकते हैं, है ना। मंडे को भी थोड़ा सा अच्छा फील होने लगेगा। व्हाट्स इट, लेट्स गो फॉर इट। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, आप सुन रहे हैं मस्ती वॉइस, आपकी चॉइस। आपकी चॉइस बताने के लिए आपको मुझे लिख के भेजना पड़ेगा। दैट इज राइट, 9158963 पर।

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: दिल टूट जाए या चार्जर गुम हो जाए, मम्मा सब संभाल लेती है।
2: जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ।
1: This Mother's Day, give her the royal treatment she truly deserves with a majestic Mother's Day celebration. Shahi Maharani. Choose from a lavish lunch buffet or a special a la carte dinner experience on Sunday, 10th May. From Tandoori Delights to Maki Dal to Kulfi Pops and Jalebis. All this at just $62 plus plus per adult and $42 plus plus per child. Plus, every mom receives a complimentary jar of Gulab Jamun or Namak Pare and a special photo card to capture the memory. Stay Shahi lunch and dinner at Shahi Maharani, Raffles City. Limited seats. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions applied.

0: हिट्स आपकी प्लेलिस्ट और हमारा थोड़ा सा मिर्च मसाला मस्ती वॉइस आपकी चॉइस यू से वी प्ले.
1: I really, really like hopeful people. I just अच्छा लगता है मुझे देख के कि जब लोग उम्मीद नहीं छोड़ते ना तो मेरे को इतनी अच्छी वाली वाइब आती है ना. मुझे मुकेश खन्ना जी से एग्जैक्टली वही वाइब आ रही है. क्या कहा है उन्होंने ऐसा, लेट मी टेल यू दैट. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, मैं हूं अंतरा आपके साथ. मस्ती वॉइस आपकी चॉइस चल रहा है. तो मुकेश खन्ना जी हमारे शक्तिमान, करेक्ट, मुकेश खन्ना जी वही है जो इस वक्त अड़े हुए हैं कि नहीं, अगर तो शक्तिमान वापस से बनेगा तो फिर रणवीर सिंह तो नहीं ही करेगा, क्योंकि इट इज वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी एंड ये वंस इन अ लाइफ टाइम कैरेक्टर है जो और कोई कर ही नहीं सकता है, स्पेशली रणवीर सिंह तो नहीं ही कर सकता है. तो चलो क्लैरिटी तो है ना, वी शुड जस्ट गिव हिम दैट. बट वेल, हाल ही में ये वापस से थोड़ा सा चर्चा के विषय बने. व्हाई? बिकॉज भाई मुकेश खन्ना साहब हमारे जो है ही इज स्टिल सिंगल. तो उन्होंने ये रिवील किया दैट उन्होंने कभी शादी इसलिए नहीं की बिकॉज ही बिलीव्स इन डेस्टिनी एंड ट्रू लव. और वो जिंदगी में सिनरेटा सिर्फ एक बार होता है. एंड ही सेड दैट राइट वुमन जो है उनकी जिंदगी की जो कोई भी है शी ऑलरेडी exists and will come when the time is right. And it's kind of reflecting his spiritual view on relationships and like she is here and you know but wo kahin pe hai, jab sahi waqt aayega mere dost to wo bhi meri zindagi mein aa jayegi. Aur bilkul sir ummeed pe duniya kaaye ho main. I am sure ki ऐसा नहीं होगा कि और कोई इश्यूज होते हैं कि जब आप आपकी बनती नहीं है किसी के साथ और लोग कहते हैं कि मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए. ना ना ना, ये सारी चीजें नहीं है. इट विल हैपन एंड आई दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट उम्मीद पे दुनिया कायम है सर. तो बिल्कुल आप भी इसी पे कायम रहें. आएगी आएगी, जरूर आएगी. मतलब ये जो बॉलीवुड में डायलॉग्स लिखे वो इस तरह से ही सोच के लिखे गए थे कि जिंदगी में बस प्यार एक बार ही होता है, जरूरी था. आप क्या क्या इस चीज में बिलीव करते हो कि प्यार लाइफ में जो है एक ही बार होता है कि बार बार भी हो सकता है? क्योंकि ये दिल तो बच्चा है जी ना, आज इस पे कल उस पे नहीं. टू मच. नहीं नहीं नहीं, आप बताओ आप क्या सोचते हो इस बारे में. मैं नहीं कह रही कि मैं इसको, मैं कह रही हूँ, मैं पूछना, मैं जानना चाहती हूँ कि लोगों का क्या कहना है. आई एम अ क्यूरियस सोल, सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क दैट. मुकेश खन्ना जी तो ही इज वेटिंग, ही इज लाइक मेरी वाली आएगी, जरूर आएगी, देखना एक दिन जरूर आएगी. और जिस दिन बेटा आ गई ना उस दिन सबके मुंह बंद हो जाएंगे, है ना. मैंने उनकी तरफ से बोल दिया. गुड इवनिंग.

0: क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो।
1: हाँ हाँ, तुम ही डीजे, तुम ही हो। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, उसे वी प्ले। बड़े बड़े हिट सुनो।

भाई मटर गश्ती करते करते ये तो बात यहाँ पर सीरियस हो गई। रिपोर्ट्स आर टू बी बिलीव्ड, बीजेपी स्टॉर्म्स हिस्टोरिक बंगाल विन। दिस एंड्स अ 15 ईयर का टीएमसी का रूल फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस। ओ माय गॉड, I don't know what to say about it, but then this is what it is. So, जहां पर दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि there are more than 100 votes जो है हमारी पार्टी आगे है, but जो है दूसरी पार्टी ने हमारे वोट रोक रखे हैं for some reason. So, well, that's that. सारे अपडेट्स जो है यहाँ पर हाथ के हाथ बिल्कुल मिलते हुए जा रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। मुझे आइसक्रीम की फोटोएं भेजी जा रही है यहाँ पर, मतलब आप देख रहे हो मेरे साथ क्या होता है। और फिर कहते हैं कि मंडे को आके अंतरा खाने की बात करती है, क्यों ना करे, सब मुझे ऐसे ऐसे में सितारो, मतलब ऐसे करना नहीं होता है, पता है ना आपको। रेडियो बस्ती 24/7 लाइव पर फिलहाल के लिए ये घंटा तो हम लोग यहाँ पे रैप करते हैं, लेकिन क्या बात कर रही हूँ, ये घंटा भी खत्म होने को आ रहा है, बताओ। बट मिलते हैं अगले घंटे में विद मोर म्यूजिक। डू लेट मी नो क्या सुनने का मन है, क्या या फिर मेरी पसंद के गाने जो चल रहे हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं। I'm okay both ways. Good evening.

0: भरे देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।

0: हाँ हाँ तुम ही डीजे तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस उसे वी प्ले बड़े बड़े हिट सुनो
1: वेलकम बैक 6 बजे के उस पार आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अंतरा यहाँ पे ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। जी हाँ आज मंडे ही है आज सुबह से ना किसी को तो कंफ्यूजन हो गया कि आज ट्यूसडे बिकॉज यूजुअली ट्यूसडे सुबह मैं आती हूँ तो सबको याद आ जाता है कि ओ आज मंगलवार है सुबह सुबह अंतरा आ रही है तो मतलब ये वाला दिन चल रहा होगा। बट आज सुबह मैं जब आई मॉर्निंग शो करने के लिए हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा था काश ट्यूसडे होता तो हफ्ता और थोड़ा सा छोटा हो जाता। नहीं लॉन्ग वीकेंड वालों खुश तो बहुत हो गए तुम लोग। हाँ छुट्टी मना के आ रहे हो सब समझ रही हूँ मैं बट वेल चलिए भाई यहाँ पर जो है बात अपनी आगे बढ़ाते हैं और आपको सीधा ले चलते हैं सिंगापुर की खबर की ओर कि जो है वेपिंग को लेकर सिंगापुर ने एक रूल बनाया उसको एनफोर्स किया एंड इन जस्ट द फर्स्ट 3 months ऑफ 2026 जो है अराउंड 2589 लोग जो है पकड़े गए एंड दे हैव बीन पेनलाइज्ड फॉर पोजेसिंग एंड यूजिंग वेप्स और इनमें से 377 अपेरेंटली केसेस दे वर लिंक्ड टू Etomidate vapes, which are considered more serious offenses. So, and that's not all. Isi same period ke dauran authorities ne seized ki over 36,000 vaporizers and related components at Singapore ke checkpoints. Matlab scale kafi bada hai and enforcement bhi clearly it was taken very very seriously. Dude, it is Singapore. Nothing comes. यहाँ पे कुछ ऐसा रूल नहीं बनता जो यहाँ पे सीरियसली नहीं लिया जाता है। सो देयर वर आल्सो केसेस ऑफ इलीगल सेलिंग एंड ट्रैफिकिंग विद पीपल सेवरल पीपल बीइंग चार्ज्ड एंड अदर्स प्रोसिक्यूटेड फॉर सेलिंग वेप प्रोडक्ट्स। ऑनलाइन स्पेस भी अंडर वॉच है यहाँ पर पोस्ट्स ऑफ प्रमोटिंग वेपिंग हैविंग लेड टू फाइंस एंड हंड्रेड्स ऑफ ऑनलाइन लिस्टिंग्स दे हैव बीन टेकन डाउन फ्रॉम ई कॉमर्स टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड लॉट मोर। एक कंसर्निंग एस्पेक्ट ये भी रहा स्कूल्स का फॉर मोर देन 200 स्टूडेंट्स जो है उनको रेफर किया गया फॉर वेपिंग रिलेटेड केसेस शोइंग दैट दिस इज बिकमिंग अ ग्रोइंग इशू अमंग द यंगर ग्रुप्स एज वेल। बट अलोंगसाइड एनफोर्समेंट रिहैबिलिटेशन के जो एफर्ट्स है वो भी साथ साथ में चल रहे हैं विद इंडिविजुअल्स बीइंग प्लेस्ड इनटू सपोर्ट प्रोग्राम। सो यस दिस क्लियरली नॉट जस्ट अबाउट द रूल्स बट ऑल्सो अबाउट अवेयरनेस एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। सिंपल सा टेक अवे है लॉज जो है स्ट्रिक्ट होने ही चाहिए एनफोर्समेंट जो है टाइटर देन एवर इन सिंगापुर एंड अथॉरिटीज आर एक्टिवली मॉनिटरिंग बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन स्पेसेस। सो हमारा काम है कि आपको इन सब चीजों से जो है अवेयर रखना इन्फॉर्म्ड रखना कि अभी तो फिलहाल कुछ ऐसा केस है और ऐसे मतलब मैं तो कोई भी सिंगापुर आता है कि मैं उनको बोलती हूँ कि ये रूल्स है बस ये रूल्स तुम तोड़ो मत बाकी तो सिंगापुर बहुत खूबसूरत है तुम्हारे लिए एकदम बहुत ही अच्छी जगह है घूमने घूमो फिरो ऐश करो है ना। सही बोलती हूँ ना मतलब अब तो इतने सालों बाद तो मैं सही ही बोल रही होगी रेडियो बस्ती 24/7 लाइव पर। अमित आपकी रिक्वेस्ट मैंने यहाँ पे लगा दी है मैं हैरान हूँ आपकी रिक्वेस्ट देख के मतलब आपने ये गाना कब सुना बट ठीक है आपकी रिक्वेस्ट है तो ऑफकोर्स आज चलानी तो पड़ेगी।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवघर, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।
2: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space, Dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
3: बजते ही नाचना जरूरी है। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले।
4: जी हाँ, और आपकी चॉइस हमेशा ही बेस्ट होनी चाहिए, स्पेशली जब हम आपको बताएं कि कहाँ से वो चॉइस आनी चाहिए। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, मैं हूँ अंतरा, आपके साथ यहाँ पर चल रहा है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस। एंड आमों की चॉइस की अगर बात करें तो खास मेरे पास एक वेबसाइट का एड्रेस है जो आप टाइप करोगे और आपने जाके वहां पे कर लेना है रजिस्टर अपने आप को। भाई स्क्रीनशॉट भेजोगे तो हम प्रोमो कोड भेजेंगे। बात कर रही हूं मैं GGMartOnline.com की। व्हाई एम आई सेइंग, भाई हम अक्सर ये बात कहते हैं किसी न किसी शो में कि ये जो हमारे लाइफ होती है और लाइफ में जो चॉइसेस होती हैं, और जब तक ये चॉइसेस आप सही करते रहोगे, लाइफ की गाड़ी भी सही चलती रहेगी। तो जब आप GGMartOnline.com पर जाओगे और ये चॉइस करोगे कि आपको ये अल्फांसो आम जो है वो ऑर्डर करने हैं, अब वो रत्नागिरी वाले आम हो या फिर देवगढ़ के आम हो, वो आपकी चॉइस है। बट देन वो आप एक बार मंगा के देखें, ट्राई करके देखें, क्योंकि जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा, और जब तक पता नहीं चलेगा तब तक आपको लगेगा नहीं कि मतलब ये क्या ही हमेशा आती है आम के बारे में बात करती है, किस क्या है, क्या खास है। आई हैव ट्राइड, आई कैन वाउच फॉर इट, इट्स रियली यम, इट्स यर रियली रियली टेस्टी। ऐसे नहीं कहा जाता है किंग ऑफ फ्रूट्स मैंगो का जो वो रसीलापन होता है, इट जस्ट ब्रिंग्स बैक अ लॉट ऑफ मेमोरीज ऑल्सो व्हेनेवर आई टॉक अबाउट मैंगोज एंड स्पेशली GGMartOnline.com के मैंगोज। ऑल्सो एट द सेम टाइम वॉट दे आर सेइंग इज दे आर गिविंग यू स्पेशली, क्योंकि आप रेडियो मस्ती 24/7 लाइव सुन रहे हैं, तो इनका कोड न्यू 10 NEW 10 ये अगर आप यूज करते हो देन यू कैन गेट दैट यू नो प्रमोशनल ऑफर राइट लाइक राइट नाउ। अब अभी करोगे तो अभी मिल जाएगा, फिर उसके बाद आप नोश फरमा सकते हो। एंड डेफिनेटली अगर आपने वहां से मंगाए हुए हैं do write to us कि आपको कैसे लगे आम एंड एवरीथिंग। बट डेफिनेटली नॉट ओनली अबाउट दिस, आई थिंक GGMartOnline.com में फॉर एवरीथिंग एल्स एज वेल। बहुत सारी अक्सर मुझे ऐसी चीजें हैं जो मुझे दूसरी जगह पे नहीं मिलती है, आई ऑर्डर इट फ्रॉम GGMartOnline.com एंड इट्स लाइक राइट देयर। एक तो डोर स्टेप पे डिलीवर जब चीजें हो जाती है तो जिंदगी ऐसे ही कितनी ज्यादा आसान हो जाती है। सो यस, आपके पर्सनल ग्रोसर का काम कर रहा है इन सिंगापुर, GGMartOnline.com गो एक्सप्लोर इट, एड टू कार्ट करिए, डिस्काउंट कोड यूज करिए एंड जस्ट ऑर्डर इन। एंड फिर एक बार आप करोगे ना, फिर मतलब आपको लगेगा कि नहीं यार, बात तो तुमने सही कही थी बेटा, मैं बात तो सही करती ही हूँ वैसे, है ना, अच्छी बच्ची हो ना, अच्छी बातें करती हूँ। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस पे, फिलहाल आप अपनी चॉइस बताओ, क्योंकि यहाँ पर लोग अपनी चॉइसें तो बताते हुए जा रहे हैं। जैसे श्रेया ने मोहित चौहान की आवाज में ये वाला गाना अपनी चॉइस बताई है।

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: चलो यहाँ पे आमों की बात हो रही है सलवा के साथ और मेरे मुंह में पानी आ गया सोचते हुए। सडनली आम हैज बिकम माय फेवरेट फ्रूट फॉर सम रीजन, ऑल थैंक्स टू ggmartonline.com मेरे ये जो है वाली जगाने के लिए। बट वेल सीधा चलते हैं, फिलहाल ट्रैफिक का अपडेट लेते हैं। 6:33 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में। हैवी ट्रैफिक आपको मिलेगा ऑन PIE टुवर्ड्स अटुआस बिटवीन BKE एंड थॉमसन रोड। हैवी ट्रैफिक की खबर ऑन TPE टुवर्ड्स SLE बिटवीन सलाजार लिंक एंड टैंपिनस एवेन्यू 10। और व्हीकल ब्रेकडाउन आपको इस वक्त मिलेगा ऑन BKE टुवर्ड्स PIE आफ्टर KJE। सो ये रहा जो है बिल्कुल ट्रैफिक अपडेट इस घंटे का। हम चलते हैं फन्ने खान के साहब के पास और सुनिधि चौहान की आवाज में कमिंग अब अगला गाना। जितने लोग अभी ट्यून्ड इन हो ना, चलो चलो चलो सबके सब बताओ। कुछ लोगों ने तो मुझे यहाँ पे बता दिया अपने रिक्वेस्ट, बाकी सारे भी फटाफट अपनी रिक्वेस्ट बताओ 9151896 पर, क्योंकि हम प्ले करेंगे।

0: गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: आपके हिट्स आपकी प्लेलिस्ट और हमारा थोड़ा सा मिर्च मसाला मस्ती वॉइस आपकी चॉइस यू से वी प्ले।
2: जब कोई मुझे ये कहता है ना कि तुम्हारी चॉइस का चला दो यार मुझे बड़ी परफॉर्मेंस प्रेशर वाली फीलिंग आती है, बट नहीं, आई लव इट कम्प्लीटली बिकॉज आई नो द पीपल हु आस्क मी, दे नो माई चॉइस एंड माई काइंड ऑफ सॉन्ग। सो वो उस कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग मुझे कहते हो, मुझे पूरा पता है इस बात का अंदाजा है। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतरा बिल्कुल आपके साथ है यहाँ पर, और यहाँ पे चल रहा है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस। मैंने सबको सब बताओ कौन सा गाना। मैं आपको इतनी फनी बात बता रही हूँ, आपको पता है मेरे पास स्कैम कॉल आया। वो स्कैम कॉल किस तरह का कॉल था, कोई मुझे ना बैंक की नौकरी ऑफर कर रहा था। लेडीज एंड जेंटलमैन, हाल ही में मैंने 10 साल कंप्लीट किया है इस कंपनी में, और जो है वो एकदम वो वाला LIC का एड नहीं आता था पहले जिंदगी के बाद भी टाइप, मैं कहां वो फील कर रही हूँ। वहां पे जो है ये जो है हमारे ये आ गए और हमसे कहते हैं कि हमने आपका रेज्यूमे देखा, ठीक है, एंड दिस गाय फर्स्ट रोट टू मी उसमें टेक्स्ट में कि हाय आर, लिख भी रहा है हाय RJ अंतरा, है ना, और उसके बाद मुझे बैंक की नौकरी भी ऑफर कर रहा है कि आपके जो क्रेडेंशियल्स है देख के हमें लगा कि आप एकदम सूटेबल है इस रोल के लिए। और मैं सोच रही हूँ भाई मैं तेरे पे हंसू कि मैं मतलब क्या ही करूँ। एंड देन ही इज कन्विंसिंग मी कि आप गलत उस पे हो, आपकी सही जगह तो हमारे बैंक में है। मैंने कहा हाँ हाँ भाई, एक तू ही है, एक तेरा ही इंतजार था पूरे जिंदगी में, एक वो हमारे मुकेश जी है जो इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन उनके उनकी जिंदगी में उनकी सोलमेट आएगी, एक मैं हूँ जो इंतजार कर रही हूँ कि कब आपका फोन आए और आप मुझे बैंक की नौकरी जो है बर्बाद करने के लिए ऑफर करें। बट देन नहीं, मतलब लाइक सीरियसली, एंड पीपल डू गेट स्कैम्ड ऑन अ सीरियस नोट because the way they talk and they sometimes pressurize you so much and ek aisa mahol create kar dete hai na kabhi kabhi, but then with me it was really funny kyunki meri to hansi hi band nahi ho rahi thi ki mujhe yakeen hi nahi ho raha tha, mujhe aisa lag raha tha ki match mein kisi ne mere ko galti se 99 ki jagah na 99 number de diya, meri feeling aisi thi। अब मैं बंद ही वियर्ड हूँ, अब मेरे को समझ में आ गया। बट दिशा, आपने मुझे एक दिशा दी थी कि अंतरा जो है अंतरा देवी लिखा है इन्होंने, अपने वाले कुछ 90s एल्बम का सॉन्ग चला दो प्लीज। एंड दिस इज अ सॉन्ग, आज सुबह जब मैं आ रही थी मॉर्निंग शो करने के लिए, दिस वाज द सॉन्ग आई वाज लिसनिंग टू। हल्का सा क्लाउडी सा समा हो रहा था, दिस गाना सोनू निगम की आवाज वाज गुंजोफाइंग इन माय इयर्स, एंड क्या मस्त लग रहा था यार, लेवल नेक्स्ट हो गया। जब मौसम और गाना एकदम सिंक में हो जाए ना, फीलिंग अलग हो जाती है। दिशा, आई होप यू लाइक माई चॉइस ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: हाँ हाँ तुम ही डीजे तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस यू से वी प्ले बड़े बड़े हिट सुनो
1: आई नो फीलिंग जज्बात हालात सब कुछ बदल डाला हमने यहाँ पे वो बदल गया रेडियो 24/7 लाइव पर अंशा आपके साथ यहाँ पे बस्ती बॉयज आपकी चॉइस पे भाई बहुत बहुत सारा प्यार दिशा तुमको मैं देना चाहती हूँ तुम्हारे साथ ये शेयर करना चाहती हूँ बिकॉज व्हेन आई प्लेड ये गाना मुझे रात दिन दीवाना एल्बम से एवरीबॉडी एवरी सिंगल पर्सन जो है दे रोट टू मी दैट गाना तो दिशा ने यहाँ पे रिक्वेस्ट कर दिया है बट दिल हमारा यहाँ पे हो रहा है वैसा वाला एक तो मौसम भी बाहर काफी हसीन हो रहा है सो इट जस्ट गोज सो वेरी वेल एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ रेडियो यू जस्ट डोंट हैव टू सी एनीथिंग यू हैव टू सी व्हाट इज देयर आउटसाइड एंड यू हैव टू जस्ट लिसन टू द म्यूजिक एंड इट जस्ट टेक्स यू टू सम डिफरेंट जोन ऑल टुगेदर एंड जैसा कि मैं अपने हर 90 शो में कहती हूँ कि हमने PhD कर रखी है जोन इन जोन आउट होने में है ना कहीं पर भी बैठा दो हम कैसे भी करके जोन आउट हो जाते हैं एंड वी लव इट बिकॉज देर आर टाइम्स आजकल क्या होता है कि बोलते हैं कि अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत रखो अपने दिमाग को थोड़ा खाली करो दिस वॉज आवर वे ऑफ खाली करना अपने दिमाग को जस्ट स्टेयरिंग आउटसाइड द विंडो एंड फॉर नथिंग ऊपर सीलिंग पे पंखा चल रहा है तो हम वही देख रहे हैं उसको देख के जोन आउट हो गए जाके चबूतरे के वो जो है सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं बाहर चिड़िया कुछ कर रही है उसको देखते हुए जोन आउट हो गए आई डोंट नो बट देन दिस वर्क्स ब्यूटिफुली वेल डू यू जोन आउट आई डू आई टिल डेट आई डू एंड आई वेरी क्लेवरली ऑल्सो डू एट टाइम्स वेन पीपल डोंट इवन रियलाइज इट बेकाबू हो जाती हूँ मैं यस फिलहाल गाना बेकाबू हो रहा है मेरे हाथ से इस वक्त तो ये घंटे को रैप अप करते हैं मैं किसी का रिक्वेस्ट यहाँ पे नहीं डालती क्योंकि अब आप लोग हो गए हो स्मार्ट अब आप मुझे कहते हो कि भाई नहीं ये तो ना गाना कट जाएगा तो ठीक है ना मैं समझ गई हूँ आपके रिक्वेस्ट अगले घंटे में आ रहे हैं ठीक है गुड इवनिंग

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
3: वेलकम बैक एंड आप सभी स्मार्ट लोगों का स्वागत है 7 बजे के उस पर रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जी हाँ, इससे पहले कि मैं वापस आऊँ और आपको अगली खबर दूँ, भाई ये जो रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से प्ले कर रही हूँ उनके लिए, जिनका आज मैंने सुबह वाला शो किया था, है ना। इतना प्यार है उनको इस गाने से कि मैं क्या ही बताऊं, मतलब इतना ज्यादा। हमारे ऑफिस में अक्सर धुरंधर के गाने वर्सेस गाने, मतलब एक ही एल्बम के 3-4 गानों के साथ साथ जो है ना तलवारें निकल आती है कि ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, या सो वेल फॉर आर डियर डियर रेणुका दिस गाना गोज देयर। मैं प्ले करते आपको भी पता होगा कि अरे ये तो रेणुका वाला गाना है। या आई एम टेलिंग यू दिस इज मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।

0: जो तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस यू से वी प्ले बड़े बड़े हिट सुनो
1: एंड बिफोर आई मूव ऑन टू हमारी अगली रिक्वेस्ट भाई कुछ अपडेट्स भी ले ले यहाँ पे रेडियो मस्ती 24/7 लाइव मस्ती वॉइस आपकी चॉइस आप सुन रहे हो मैं हूँ अंतरा यहाँ पे आपके साथ आपकी चॉइसेस के साथ साथ मेरी चॉइसेस भी प्ले हो रही है बट आई एम लविंग व्हाट यू आर रिक्वेस्टिंग टुडे सो वेल लेट्स गो विद दैट बट बिफोर दैट यहाँ पे जो है आपने ये देखा खबर कि नहीं देखा मैं बताती हूँ अगर नहीं देखा है सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन है दे हैव सेट दिस न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय अनफर्लिंग द लार्जेस्ट अंडर वाटर नेशनल फ्लैग एट राधानगर बीच इतना खूबसूरत लग रहा है ना लाइक बिकॉज इन्होंने ड्रोन शॉट लिए हुए हैं एंड इट इज जस्ट लुकिंग लाइक पानी के नीचे इंडिया का वो लहराता हुआ फ्लैग इतना एक अलग सा इफेक्ट आ रहा है इट्स लुकिंग रियली रियली नाइस एंड दिस ह्यूज इंडियन ट्राइकलर वाज अबाउट 60 by 40 meters इट वाज प्लेस्ड अंडर द सी विद द हेल्प फ्रॉम डाइवर्स एंड एजेंसीज लाइक पुलिस हो गया नेवी हो गए कोस्ट गार्ड हो गए 200 डाइवर्स इनफैक्ट मोर देन 200 डाइवर्स इंक्लूडिंग 3 स्कूल स्टूडेंट्स दे टुक पार्ट इन दिस officials वगैरह सब ये थे and this weekend only they this achievement was done and it was it's just amazingly like yeah अब वर्ल्ड रिकॉर्ड है तो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है with a 2400 square meter flag not a small and easy feat to achieve it just you know दिल जब भी फ्लैग देखता है ना अपने इंडिया का एकदम एक फजी सी कोजी सी फीलिंग नहीं आती योर हार्ट जस्ट मेल्ट्स अ लिटिल बिट व्हेनेवर यू सी तिरंगा झंडा अपना इट्स जस्ट दैट नाइस होम वार्म काइंड ऑफ फीलिंग यू ऑलवेज वांट टू लुक एट दैट फ्लैग एंड फील लाइक दैट फॉर एवर नहीं मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ आप बताएं इफ यू कैन रिलेट टू माई फीलिंग और नॉट राइट नाउ माई फीलिंग इज कि अगली रिक्वेस्ट पे बिल्कुल चले जाना चाहिए हमारी सलमा ने एक और 90s का गाना रिक्वेस्ट किया है एंड 90s के तो हम दीवारे है ही है सो एनी टाइम और भी अगर करने हैं तो कर सकते हो है मतलब आज तो लिसनर्स की चलेगी ना आज तो और किसी की भी नहीं चल सकती समझ रहे हो सलमा here you go आपकी रिक्वेस्ट

0: देखो ऐसी बात है सलमा, जो इंसान होता है ना इंसान, वो वही गलतियां करता है। इससे ये मैं प्रूव कर सकती हूँ कि मैं एआई नहीं हूं, मैं इंसान ही हूं। हो गई मुझसे गलती। मैं इतनी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करके यहाँ पे बैठी हुई हूँ कि कभी कभी ऐसे ऐसे हसीन हादसे भी हो जाते हैं यहाँ पे मेरे साथ। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस पे सलमा ने रिक्वेस्ट किया था मुझसे गाना। तू है मेरी किरण, ठीक है। फॉर सम रीजन माई माइंड डिसाइडेड कि देखो फिल्म तो एक है, सलमा को ये नहीं ये वाला गाना सुनना है। एंड मैं तब से उसको कन्विंस करने में लगी हुई हूँ कि देख तेरा मूड इस गाने से सुन के ज्यादा बेटर हुआ है, इसीलिए मैंने ये वाला गाना चलाया तेरे लिए। सो प्रतिथि, आर यू रेडी? सो प्रतिथि एंड मी आर सेम इन द सेम लाइंस। व्हाई? बिकॉज जब भी हम वर्कआउट कर रहे होते हैं हमें धुरंधर के गाने चाहिए। तो प्रतिथि कर रही है अपने वर्कआउट का सेशन, उसने कहा टाइटल ट्रैक प्ले कर दो धुरंधर का, हम एकदम मस्त से हमारा सेशन हो जाएगा। मैं कहा बिल्कुल, लेट्स गो प्रतिथि, लेट्स गो।
1: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.

0: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है। ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
1: मुझे चांद पे ले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
1: रात अकेली है।
2: जोश में रहो।
3: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
4: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़ रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
5: बजते ही नाचना जरूरी है। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस। यू से वी प्ले।
6: पता है इतने साल हो गए ये आरजेइंग करते हुए एंड आई कैन समटाइम्स फील कि किस तरह के कंटेंट भी हम जो बोलते हुए आ रहे हैं वो कितना कितना चेंज उसमें भी आ गया है। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पे मैं अंतराप के साथ यहाँ पर और मस्ती वॉइस आपकी चॉइस चल रही है। प्रतीति, आई होप दैट गाना डिड जस्टिस टू व्हाट एवर यू वर डूइंग। सो या धुरंधर का एल्बम इज लाइक दैट, यू जस्ट पुट इट एंड देन ऑटोमेटिकली आपका पेस जो है ना एकदम उसके हिसाब से सेट हो जाता है। इट्स टू गुड। सो कमिंग बैक टू दिस वन, कॉन्टेंट की मैं यहाँ पे बात कर रही थी एंड व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट इट, बिकॉज क्या था कि पहले हमारे पास ये बॉलीवुड में ही इतना कुछ होता था बात करने को कि हमारे सारे मतलब मोस्ट ऑफ द शोज में इसकी गॉसिप उसकी गॉसिप ऐसा वैसा, बट आजकल कोई कुछ कहाँ पे इतना ज्यादा गॉसिप इतना नहीं कर रहा जितना आम इंसान गॉसिप क्रिएट करा रहा है ऐसी ऐसी चीजें और वो डाल रहा है इंटरनेट पे। FOC भाई तुम एंजॉय करो। हुआ कुछ ऐसा कि ये जो हमारा बंदा है लखनऊ का, ठीक है, लड़का सा लड़का एकदम, ठीक है, मोहल्ले का जो लड़का होता है ना वैसा। तो भाई क्या था कि हमारे भाई को प्यार हुआ था किसी से और उसके बाद फिर ब्रेकअप हुआ, तो किसी वजह से ब्रेकअप हुआ होगा जिसकी वजह से बंदी ने इसको कर दिया ब्लॉक। ठीक है, हर जगह से, फोन पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह से उसने ब्लॉक कर दिया। अब क्या किया इसने, ये क्लास 12th का लड़का, ठीक है, और इसने कर लिया क्लास 12th टॉप। अब नाउ इफ यू हैव सीन कोटा एंड कानपुर के कोचिंग सेंटर्स एंड लखनऊ के कोचिंग सेंटर्स वाले जो एरिया होते हैं, तो दीज कोचिंग सेंटर्स हैव दिस थिंग ऑफ बोर्ड पे भाई हमारे टॉप स्टूडेंट का फोटो आना चाहिए, है ना, वो NIT नीट और ये सारी चीजें करके बड़ा बड़ा आपका वहां पे AIR पूरा अपना रैंकिंग और ये सारी चीजें, इट्स अ डिस्प्ले ऑफ लाइक हाउ प्राउड वी आर हमारे कोचिंग से निकला हुआ है। भाई लड़के के पूरे लखनऊ घर में जो है फोटो छुपे हुए। नाउ ही इज राइटिंग ऑन इंस्टाग्राम एंड सेइंग यू ब्लॉक्ड मी एवरीवेयर, नाउ माय होर्डिंग आर अक्रॉस द सिटी। कर ले ब्लॉक, कैसे करेगी ब्लॉक इससे, तो मतलब आई एम अनस्टॉपेबल, अब तो तुम मुझे रोक ही नहीं सकती। मैं कहा भाई साहब ओ माय गॉड ब्रो, नाइस नाइस कमबैक ब्रो, नाइस कमबैक। वो ना कभी कभी ना ऐसी चीजें आपको एक अलग तरीके का डोपामिन इफेक्ट देती है। इफ यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। वेल कमिंग बैक टू मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यहाँ पे हमारी सप्तांति की चॉइस जो उन्होंने बहुत पहले बता दी थी, मैंने कहा कि नहीं मैं थोड़ा सा और आती हूँ 7:30 के आसपास एंड मैं आपका गाना जो है वो प्ले करती हूँ। इट्स अ रेट्रो सॉन्ग, ऑफकोर्स सप्तांति लव्स पुराने गाने एंड इट्स अ वेरी नोन रेट्रो सॉन्ग। सो यस आंटी, आपकी रिक्वेस्ट राइट है ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: to raise the bar. Ramba. Mosty Top 20 Bollywood Chart Busters of the Week. Full on Renuka style. Renuka. Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musty Top 20, only on Radio Musty 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009. Josh Mehra.
1: दिल टूट जाए या चार्जर गुम हो जाए, मम्मा सब संभाल लेती है।
2: जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ।
1: This Mother's Day, give her the royal treatment she truly deserves with a majestic Mother's Day celebration, Shahi Mahar Rani. Choose from a lavish lunch buffet or a special a la carte dinner experience on Sunday, 10th May. From tandoori delights to maki dal to kulfi pops and jalebis. All this at just $62 plus plus per adult and $42 plus plus per child. Plus, every mom receives a complimentary jar of gulab jamun or namak pare and a special photo card to capture the memory. Mother's Day Shahi Lunch and Dinner at Shahi Maharani, Raffles City. Limited seats, book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions applied.
3: Aapke hits, aapki playlist aur hamara thoda sa mirch masala. Musti Boys, aapki choice. You say, we play.
4: पता है, एक बहुत अरसे तक जो है मुझे ये लगता था कि मेरी मम्मी को बाहर का खाना बिल्कुल पसंद ही नहीं है, क्योंकि जब भी मैं स्कूल से लौटूं या फिर एवरी डे इट यूज टू बी हर थिंग कि नहीं घर पे खाना खाना है, मतलब बाहर का नाम लेते ही ना कुछ तो उनमें ना माता जाती थी कि नहीं बाहर का खाना। बट हाँ, बीच बीच में हम जरूर बाहर जाते थे, बट इट वॉज नॉट दैट रेगुलर, राइट। एंड आफ्टर नाउ, लाइक आफ्टर सो मेनी ईयर्स, आई यू नो आई सी हर नाउ एंड समटाइम्स शी सी इसकी, चलो आज इधर से ऑर्डर, मैं जब कानपुर जाती हूँ यहाँ से ऑर्डर कर लेते हैं, मैं कहूंगी मम्मा बाहर चले खाना खाने, एंड शी विल बी लाइक मोस्ट एक्साइटेड वन कि हाँ हाँ। आई नेवर रियलाइज दैट यू नो, जब मेरी मम्मी ऑफिस से शायद उस टाइम पे जब मैं स्कूल में थी आती होंगी घर, और उनको भी कभी कभी मन नहीं करता होगा कि यार नहीं बनाना मुझे आज खाना, बहुत थकान हो रही है, बट देन ऑब्वियसली शी यूज टू सी मी एंड माई ब्रदर कि इनको तो ऑफकोर्स बाहर का खाना नहीं खिलाना है, सबको फीड करना है, सो शी यूज टू कम बैक एंड then cook for us and then she used to make sure that we are having you know ghar ka khana and everything, so you know even our moms are girls, right, to unki bhi to ichhaen hoti hongi. So now that the times have changed and now that we have started realizing so many things, I to tell you bhai, apne ghar ki queen ko bilkul dijiye shahi treatment. Abhi baat ho rahi thi na to mujhe usi se yaad aaya that shahi maharani jo hai har saal ki tarah this year as well they are having this majestic Mother's Day buffet. देखिए buffet आप lunch पे जा सकते हैं, अगर आपके पास रात को time है तो आप उनको अपनी मम्मी को लेकर रात को आला कार्ट मेन्यू जो है उसमें जाकर enjoy कर सकते हैं. Everything about and every dish about Shahi Maharani, I cannot say less or more. It is just fantastic. I am more looking towards like जो स्टार्टर्स और मेन कोर्स तो है ही, बट दे हैव इंट्रोड्यूस दी कुल्फी पॉप्स विच आर वेरी नाइस, जलेबीज तो आर बेस्ट एट शाही महारानी. सो वेल, 10th ऑफ मे संडे को मदर्स डे वाले दिन, ईदर यू गो फॉर लंच और यू गो फॉर डिनर, दैट्स योर चॉइस, बट डेफिनेटली टेक योर मॉम ओवर देयर. बट उसी के साथ साथ जो है ये भी कहा जा रहा है कि इस ओकेजन को और खास बनाने के लिए अ जार ऑफ होम मेड गुलाब जामुन या फिर सेवरी नमक पारे, व्हाटएवर, लाइक मम्मियों को जो है एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड बिल्कुल दिया जाएगा, एंड फोटो कार्ड भी जो है दिया जाएगा जस्ट टू रिमेम्बर दिस स्पेशल डे विच यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट टुगेदर. टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, डेफिनेटली ये तो बिल्कुल भूलना ही मत. लिमिटेड सीट्स जो है वो अवेलेबल है, तो आप उनको कॉल करके रिजर्वेशन अभी से करा ले ताकि एकदम टेंशन फ्री रहो आपकी मम्मी को, तो इस बार लेकर जाना ही है शाही महारानी. 6235-8840, दैट्स द नंबर. इसी बात पे अगला गाना हो जाए, बनता है यार, टोटली बनता है.

0: हाँ तुम ही डीजे तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस उसे वी प्ले बड़े बड़े हिट्स सुनो
1: क्या बात है रेडियो मस्ती 24/7 लाइव मंत्र आपके साथ थी यस अब वो थी लगाना पड़ जाएगा बिकॉज शो यहाँ पे होने वाला है ये वाला खत्म. आई लव्ड इट, आई कंप्लीटली लव्ड ईच एंड एवरी मोमेंट. 5 से 8 बज गए और मतलब यहाँ पर दिल मेरा इतना भरा हुआ है आपकी इतनी प्यारी प्यारी रिक्वेस्ट एंड एवरी थिंग इन द वे एंड इतने सारा कुछ हमने बात बात किया जस्ट मेक्स माई हार्ट सो फुल. सो वेल आज की दिहाड़ी हो गई है अब हम कल सुबह आएंगे. हम बस थोड़ी देर के लिए घर जाएंगे ठीक है और फिर हम कल सुबह वापस से हाजिर हो जाएंगे. कल हमारा मंगलवार हमारा वाला ही शो है मस्ती का मंत्रा तो आप भी सुबह आ जाना मेरा मेरे को कंपनी देने के लिए साथ देने के लिए तो बच आई नो दैट डेफिनेटली यू शैल डू दैट राइट. इसी बात के साथ आई होप यू एंजॉयड. बाकी अगर किसी की रिक्वेस्ट रह गई हो तो कल सुबह बता देना मैं कल के शो में भी प्ले कर दूंगी. मैं ऐसा कोई टेंशन नहीं है अपने साथ हम सब एडजस्ट कर लेते हैं हम सारे के सारे. अपार्ट फ्रॉम बीइंग लाइक द सुपर एडजस्टिंग किसी ने हाल ही में मेरे को बड़े ही कमाल की जो है एक चीज फॉरवर्ड की एंड इट मेड सो मच ऑफ सेंस. सो आई थॉट दैट जब मैं अपने शो पे आऊंगी तो मैं जाते जाते आपको भी वो चीज बताते हुए जाऊंगी. मेरे को मेरे दोस्त ने लिख के भेजा कि अंतरा यू नो अपनाना भी सीखो ठुकराना भी सीखो और जहां इज्जत ना हो वहां से जाना भी सीखो. एंड आई नो व्हाई डिड शी सेंड मी दिस थिंग एंड व्हाई डिड दिस ज्ञान की धारा जो मेरी बेस्टी ने मेरे को मेरी तरफ भाई है वो क्यों भाई है वो भी मैं समझ गई. बट इट मेड सो मच ऑफ सेंस ऑल ऑफ अ सडन कि अपनाना भी सीखो ठुकराना भी सीखो और जहां इज्जत ना हो वहां से जाना भी सीखो. और इसी पर्ल ऑफ विजडम के साथ हम यहां से जाते हैं कल सुबह आपसे की मुलाकात. बाय बाय टेक केयर गुड नाइट हैव अ ग्रेट इवनिंग अहेड.

0: देखो देखो वो आ गया।
1: सिंगापुर, जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

यादों का कारवा विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

हेलो सिंगापुर, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हाजिर है आपका दोस्त एंड होस्ट समर लेकर यादों का कारवां, जो आज आपको ले चलेगा 1971 की हिट फिल्मों और उनके बेहतरीन गानों की दुनिया में। 1971 में देश बदल रहा था और फिल्में भी बदल रही थी। 50 और 60 के दशक की रोमानियत, रोमांस, रोमांटिसिज्म अब फिल्मों में नजर कम आने लगा था, या यूं कहूं खत्म होने लगी थी ये रोमानियत, और कहानियों में मसालों का तड़का लगने लगा था। इसलिए 1971 के मसालों की खुशबू का मजा लीजिए और अपने दिन को मसालेदार तड़केदार बनाइए। तो शुरू करते हैं आज का यादों का कारवां। पहली फिल्म जिसका मैं जिक्र करूंगा वो है हाथी मेरे साथी। जानवर कैसे एक आदमी का दोस्त बन जाता है और ये दोस्ती ऐसी कि देखने वालों की हंसी और आंसू दोनों ही नहीं थमते। एक बिल्कुल नई तरह की कहानी और इस फिल्म ने उस साल बनाया सबसे बड़ी हिट फिल्म होने का कीर्तिमान। इनफैक्ट ये उस समय किसी भी साउथ इंडियन प्रोड्यूसर की हिंदी में सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। इस फिल्म ने हमें दी थी सलीम जावेद जैसे स्क्रिप्ट राइटर्स की जोड़ी। जावेद साहब ने एक इंटरव्यू में बताया था कि राजेश खन्ना सलीम साहब के पास पहुंचे और बोला कि यार फिल्म के प्रोड्यूसर ने मुझे इतना पैसा दिया है कि मेरे बंगले का पूरा पैसा चुक जाएगा, लेकिन फिल्म एक रीमेक है और इसके स्क्रिप्ट में दम नहीं है, इसे सही कर दो यार। इस स्क्रिप्ट पर मैं काम नहीं कर सकता और फिल्म छोड़ नहीं सकता क्योंकि मुझे पैसा चाहिए। तो साहब सलीम जावेद की जोड़ी ने स्क्रिप्ट लिखी और इतिहास रच दिया। जिस समय ये फिल्म रिलीज हुई उस समय फिल्म की हीरोइन तनुजा की बेटी काजोल जी, हमारी काजोल, 6 साल की थी। और तनुजा जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि काजोल ने कई दिन तक तनुजा से इसलिए बात नहीं की कि फिल्म में उनके कारण हाथी को मरना पड़ता है। ये इम्पैक्ट था इस फिल्म का। बहरहाल फिल्म का म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था और सारे गाने सुपरहिट थे। नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, ये गाना तो ऐसा था कि लोगों के आंसू नहीं रुकते थे। अब चूंकि कई फिल्में ऐसी बन चुकी हैं तो हो सकता है कि आपको ये उतना इम्पैक्टफुल ना लगे, लेकिन फिल्म बड़ी कमाल की थी उस जमाने में। फिल्म के गाने अच्छे हैं, जैसे चल चल चल मेरे हाथी, ओ मेरे साथी, ओ चल यार धक्का मार, या फिर थम जा ठंडी हवा। कौन सा सुनेंगे? टाइटल ट्रैक कंप्यूटर जी। शुरुआत में ही दो गाने सुनवा दीजिए प्लीज। और आप सुनते रहिए सिंगापुर रेडियो मिस 24/7 लाइव, क्योंकि 1971 में बहुत ही बेहतरीन फिल्में आई थी। अगली फिल्म के गाने सुनेंगे तो आनंद आ जाएगा आपको। कीप लिसनिंग।

0: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं।
1: कहिए ना, आप रुक क्यों गए?
2: गाओ ना बेटी, गाओ।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
0: Not all music is loud. Some songs just sneak in.
2: What
0: makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged, your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.
3: आज चर्चा में है 1971 का साल, यादों का कारवां में। मैं हूं जमर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव के स्टूडियो से एक बार फिर से कर रहा हूं आपका स्वागत। हिंदी फिल्म के इतिहास की ऑल टाइम क्लासिक अगर कोई फिल्म कही जाए तो वो है आनंद। इसी साल आई थी कमाल की कहानी, कमाल का गीत संगीत, कमाल की एक्टिंग और कमाल के एक्टर्स कैरेक्टर्स। इस फिल्म को जितनी भी बार देखिए आप, कुछ नया देखने को और सीखने को मिलता है। फिल्म से जुड़ा एक रोचक किस्सा है। ये फिल्म किशोर कुमार और महमूद साहब को लेकर बनाई जाने वाली थी। ऋषिकेश मुखर्जी, इस फिल्म के डायरेक्टर, किशोर कुमार साहब से मिलने गए तो उनके गेटकीपर ने मुखर्जी साहब को अंदर नहीं जाने दिया। दरअसल ऋषिकेश नाम के एक आदमी के साथ किशोर कुमार साहब का उन दिनों में कोई झगड़ा चल रहा था, कोई विवाद चल रहा था, और किशोर कुमार ने गेटकीपर को कह रखा था कि यदि इस नाम का कोई आदमी आए तो उसे अंदर मत आने देना। गेटकीपर ने ऋषिदा को वही आदमी समझ लिया और ऋषिदा को बुरा लगा तो उन्होंने किशोर कुमार के साथ काम नहीं करने का फैसला कर लिया और इसी तरह महमूद भी बाहर हो गए। बहरहाल ये फिल्म ऋषिदा ने राज कपूर साहब को समर्पित की थी, क्योंकि राज साहब ही ऋषिदा को बाबू मोशाय कहकर बुलाते थे। ये बात उन दिनों की है जब ऋषिदा एडिटिंग किया करते थे फिल्मों की, और राज कपूर साहब की कई फिल्में एडिट की उन्होंने। आनंद ने उस साल के सारे अवार्ड्स जीते और सलिल चौधरी ने कमाल की धुनें रची थी। डायलॉग्स और गीत गुलजार और योगेश साहब ने लिखे थे और ये फिल्म अमिताभ बच्चन की पहली हिट फिल्म थी। इस फिल्म को नहीं देखा तो समझ लीजिए कुछ नहीं देखा आपने, तो तुरंत देखिएगा जब भी मौका मिले। म्यूजिक एल्बम तो सुनने लायक है, गाने मैं सुनवा रहा हूँ आपको रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। ये गाने सुनिए, जिंदगी से भरे हुए गाने, कितनी सीख है इन गानों में। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, और कहीं दूर जब दिन ढल जाए, आहा क्या गाने सिर्फ आपके लिए आ रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव से। कीप लिसनिंग।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
3: आई लव यू रसना।
2: समोसा पैटीज, फूटी, लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards, only on Radio Mercy 24/7 Live.
4: मैंने

0: हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं. Presenting the encore of your favorite shows. Another day, another time. For your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live. A part of Musti Media Network Singapore.
0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा.
2: हाँ जी जी.
0: आधा kg मसूर दाल.
2: जी जी.
0: काजू किशमिश. ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं.
2: जी जी.
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो.
2: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर.
0: क्या जी?
2: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर. जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com. ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप.
0: वाह जी, क्या बात जी.
2: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर.
3: वेलकम बैक, मैं हूँ समर. आज यादों का कारवां के जरिए आपसे जिक्र हो रहा है 1971 की फिल्मों का. मैंने 1970 की यादों के कारवां में आपको बताया था कि एक टाइटल था हरे रामा हरे कृष्णा, जो मनोज कुमार साहब यूज करना चाहते थे, जिसे रजिस्टर कराया था मनोज कुमार साहब ने, लेकिन फिर अपनी फिल्म का नाम बदलकर उन्होंने पूरब और पश्चिम कर लिया. तो ये जो टाइटल था वो उन्होंने दे दिया देव साहब को, देवानंद साहब को. यही है वो अगली फिल्म जिसका मैं जिक्र करूंगा, हरे रामा हरे कृष्णा. देवानंद साहब को इस फिल्म का आइडिया मिला जब वो अपनी फिल्म प्रेम पुजारी की शूटिंग काठमांडू में कर रहे थे, नेपाल में. उनके सामने एक लड़की सिगरेट पी रही थी और नशे में थी. यही उन्होंने हिप्पी कल्चर को नजदीक से देखा और फिल्म बनाने का फैसला कर लिया. ये फिल्म हिप्पी कल्चर, वेस्टर्नाइजेशन और डाइवोर्स्ड फैमिली की कहानी है. फिल्म ने हमें दी जीनत अमान और पंचमदा का हुआ नया अवतार. देव साहब चाहते थे कि म्यूजिक सचिन दा दें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहा कि फिल्म काफी वेस्टर्न थॉट की है, इसका म्यूजिक पंचम दे सकता है, मैंने. और फिर पंचम ने इतिहास रच डाला. बताते हैं कि दम मारो दम गाने को लेकर देव साहब बहुत एक्साइटेड नहीं थे, लेकिन पंचम जानते थे कि ये गाना हिट होगा. देव साहब को उन्होंने बड़ी मुश्किल से मनाया और पहले ही गाना रिकॉर्ड कराया. गाना रिलीज होने के बाद क्या हुआ ये तो हम सब जानते हैं. ये देव साहब के डायरेक्शन में दूसरी बड़ी हिट फिल्म थी. आज भी दम मारो दम और फूलों का तारों का जैसे गानों का कोई मुकाबला नहीं है. ऑल टाइम क्लासिक है ये. तो कौन सा सुनवाऊं, दोनों? कंप्यूटर जी क्या कह रहे हैं लोग, सुनवाइए.

0: दस का बीस।
1: अरे अब बस 10 दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musty Top 20, only on Radio Musty 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.
2: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: देखो देखो वो आ गया।
1: सिंगापुर, जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: यादों का कारवा विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ट्यून इन किया हुआ है आपने, मैं हूँ समर। आज यादों का कारवा के जरिए आपसे मुखातिब हूँ 1971 की फिल्मों को लेकर।

एक फिल्म आई थी इसी साल, कटी पतंग, राजेश खन्ना आशा पारेख की एक और सुपरहिट फिल्म। गुलशन नंदा के इसी नाम की एक नॉवेल पर बेस्ड थी ये फिल्म और इसने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए थे। आशा पारेख ने कमाल की एक्टिंग की और सबसे बड़ा कमाल था म्यूजिक का। आनंद बख्शी के गीत थे और पंचम का म्यूजिक था। फिल्म के सारे गाने सुपरहिट थे। याद कीजिए वो गाना, मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बू कहते हैं। आशा जी ने इस गाने को ऐसे गाया है कि कोई और गा ही नहीं सकता। और मुकेश जी की आवाज में वो क्लासिक सॉन्ग, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, ये शाम मस्तानी। शर्मिला जी ने एक बार कहा था कि इस रोल के लिए पहली चॉइस वही थी, लेकिन डायरेक्टर शक्ति सामंत ने कहा कि उन्होंने इस रोल के बारे में आशा पारेख के अलावा किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। खैर जो भी हो, कड्डी पतंग कमाल की फिल्म है और सबसे बड़ा कमाल है फिल्म का म्यूजिक, जो आपके कलेक्शन में होना चाहिए। तो कंप्यूटर जी, इसके भी दो गाने बनते हैं, क्या कहते हैं आप? खुद कंफ्यूज हैं। तीन, दो दो सुनवा दीजिए। सिंगापुर, ये गाने आप सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। दिस इज सिंगापुर्स ओनली हिंदी बॉलीवुड रेडियो, नाउ ऑन द गो। कीप लिसनिंग।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। वेलकम बैक, सिंगापुर रेडियो मंजी 24/7 लाइव पर यादों का कारवां के जरिए आज 1971 की फिल्मों की बात कर रहा हूँ मैं। 70 के दशक में फिल्म दर्शकों के बीच एक अजीब ट्रेंड था, जो गाना दर्शकों को बेहद पसंद आता था उस गाने के बजते ही लोग पर्दे की तरफ सिक्के फेंका करते थे और वो सारी कमाई थिएटर वाला ले जाता था। ऐसी एक फिल्म आई थी महबूब की मेहंदी, इस फिल्म में भी सिक्कों की जमकर बरसात होती थी और थिएटर वालों को ताकीद करनी पड़ती थी कि लोग सिक्के न फेंके क्योंकि पर्दे को नुकसान पहुंचने लगता था और ये सिक्के फिर भी फेंके जाते थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की सबसे खूबसूरत धुनों में से एक, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं पर भाई क्या करें, लोग बड़े खुश हो जाते थे और आपे से बाहर हो जाते थे इस गाने को सुनकर और सिक्के फेंकना शुरू कर देते थे। इसी गाने से फिल्म की शुरुआत होती है एक्चुअली, और लीना चंद्रावरकर क्या गजब की खूबसूरत लगी है इस गाने में, नीले हरे रंग के शरारे में वो कयामत ढा रही है। बताते हैं कि कई लोग तो बस यही गाना देखने के लिए फिल्म का टिकट लेते थे, गाना खत्म होते ही निकल जाते थे। राजेश खन्ना साहब का ये टाइम था और उन्होंने 1969 से 1971 के बीच 18-19 हिट फिल्में दी थी और ये भी उनमें से एक थी। एक प्रोस्टिट्यूट की बेटी की कहानी जिसे एक प्रतिष्ठित मुस्लिम परिवार का लड़का अपनाना चाहता है और उसके साथ वो ये जो चिलमन है जैसे गाने भी गाता है। फिल्म हिट थी और इसका ओपनिंग सॉन्ग ऑल टाइम हिट है, अभी गाना यूट्यूब पर मौजूद है, आप इसे कितनी भी बार देख सकते हैं। इसके लिए सिक्के फेंकने की जरूरत नहीं है, फेंकेगा मत, स्क्रीन टूट जाएगा। और आप इसे एक बार देखेंगे तो मेरा दावा है कि एक बार नहीं देखेंगे, इसे आप भी बार बार देखना चाहेंगे। फिलहाल ये गाना मैं सुनवा देता हूँ आपको, रेडियो मसी 24/7 लाइव ट्यून इन रखिएगा, अभी बहुत सारे बेहतरीन गाने आने बाकी हैं। मैं हूँ समर, यादों का कारवा लेकर।
2: ये जो चिलमन है

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
3: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।

वेलकम बैक। आज चर्चा में है 1971 का साल, यादों के कारवां में मैं हूं आपके साथ समर। एक बार फिर से आपका स्वागत रेडियो मसी 24/7 लाइव की तरफ से। गुलजार साहब की एक डायरेक्टर के तौर पर पहली फिल्म का जिक्र कर लें, ये भी 1971 में आई थी, मेरे अपने। तपन सिन्हा की बांग्ला फिल्म की एक रीमेक थी मेरे अपने, और इस फिल्म में पहली बार शत्रुघ्न सिन्हा और विनोद खन्ना को लीड रोल मिले थे। दोनों अब तक विलेन का रोल करते आ रहे थे, और इस फिल्म में शत्रु जी का एक गजब का डायलॉग था, वो याद होगा शायद आपको, शाम आए तो कह देना छेनू आया था। आज भी ये जबरदस्त हिट है। इसी फिल्म ने हमें डैनी पेंटल, दिनेश ठाकुर जैसे एक्टर्स दिए। एन चंद्रा इस फिल्म में गुलजार के असिस्टेंट थे, और करीब 15 साल बाद जब उन्होंने पहली फिल्म अंकुश बनाई थी तो वो भी कुछ इसी कहानी पर बेस्ड थी। देखिए आपने अंकुश, अगर देखिए तो मेरे अपने भी देखिएगा, आप समझ जाएंगे कैसे इंस्पायर होता है एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर से। असिस्टेंट थे उस फिल्म में, तो जाहिर लाजमी बात है कि वो इस फिल्म से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए और उन्होंने अपनी फिल्म अंकुश बनाई। कमाल की फिल्म है दोनों। फिल्म का म्यूजिक दिया था सलील चौधरी साहब ने, और गाने खुद गुलजार साहब ने लिखे थे। फिल्म का एक गाना हालचाल ठीक ठाक है, बाकी सब ठीक ठाक है, बहुत ही सटायरिकल गाना है। उस जमाने में नौकरियां नहीं थी, रोजगार नहीं था, और ये जो गाना है इसके जो लिरिक्स हैं, जो बोल हैं, वो इस मायने में बड़े कमाल के हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, बस नौकरी नहीं है। और बाकी वो गाना तो है ही, कोई होता जिसको हम अपना अपना कह लेते यार, बहुत ही बढ़िया। मीना कुमारी जी इस फिल्म के दौरान काफी बीमार थी, और रिलीज के कुछ समय बाद ही वो चल बसी थी। लेकिन ये फिल्म देखने लायक है, देखिएगा जरूर जब भी आपको मौका मिले। फिलहाल इस फिल्म से ये गाना सुन लीजिए। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर जारी है यादों का कारवां। कीप लिसनिंग।

वेलकम बैक, मैं हूँ समर। एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर यादों का कारवां। और अब जिस फिल्म का मैं जिक्र करूंगा वो आपको शर्माने पर मजबूर कर देगी। शर्मीली था उसका नाम, आप तो शर्माए नहीं। ऐसे ही कह दिया था जी, मुझे लगा शायद कोई तो शर्मीली होगी जो मुझे सुन रही होगी। सुबोध मुखर्जी की इस फिल्म ने एक्ट्रेस राखी को सुपरस्टार बना दिया था और इसी फिल्म के बाद उन्हें एक पहचान मिली। फिल्म में उनका डबल रोल था और कहानी बहुत अच्छी थी, एक ग्रिपिंग स्टोरी विद सचिन दा का सुपर हिट म्यूजिक। फिल्म में 7 गाने थे और 7 सुपर हिट थे। सचिन दा में पता नहीं क्या बात थी, उनका काम 1-2 गानों से तो चलता ही नहीं था। उनकी शायद ही कोई ऐसी फिल्म होगी जिसमें 1 या 2 गाने अच्छे हों, वो पूरा एल्बम हिट बना देते। अब इसी फिल्म को ले लीजिए, मेघा छाए आधी रात जैसे क्लासिकल गाने से लेकर रेशमी उजाला है मखमली अंधेरा और आज मदहोश हुआ जाए रे से लेकर खिलते हैं गुलियां तक, आप कौन सा गाना छोड़ सकते हैं बताइए जरा। इस फिल्म के लिए पहले सायरा बानो को साइन किया गया था लेकिन वो बीमार पड़ गई और राखी के हाथ लॉटरी लग गई, हिट हो गई थी वो इस फिल्म से। फिल्म जबरदस्त हिट रही, राखी जी सुपर हिट हो गई। 2 तरह के रोल और दोनों अलग तरह की शेड वाले रोल, तो उनको तो एक तरह से बहुत बड़ा मौका मिल गया था और उन्होंने इसे भुना लिया।

साबित कर दिया कि वो एक बेहतरीन एक्ट्रेस है। फिलहाल शर्मिली से टाइटल ट्रैक ओम मेरी और खेलते हैं गोलियां अभी के लिए। नहीं, कौन से फिर? कंप्यूटर जी की पसंद कुछ और है। कंप्यूटर जी चलिए एक गाना आप अपनी पसंद से सुना लीजिए, और अगर आप भी इस बीच अपनी कोई पसंद रखते हैं तो हमें जरूर बताइए हमारे फेसबुक पेज पर आकर। इंतजार कर रहा हूँ भाई, मैं कब से बैठा हूँ अभी के लिए।

0: ए यहाँ हमें जमाना देखे
1: तो
0: आओ चलो कहीं छुप जाए।
1: अच्छा।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: देखो देखो वहाँ क्या,
1: सिंगापुर जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

सुनिए यादों का कारवा विद समर। याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

स्वागत आपका एक बार फिर से रेडियो मसी 24/7 लाइव के इस बेहद खूबसूरत शो में, जिसका नाम है यादों का कारमा। और आज यादों का कारमा गुजर रहा है 1971 के साल से। सिंगापुर इसी साल एक और फिल्म आई थी, गुड्डी। कैसे भूल सकते हैं इस फिल्म को, ये अपने आप में अनोखी फिल्म थी। ऐसी फिल्म न पहले कभी बनी और बाद में भी कोई बनाने की हिम्मत नहीं कर पाया। एक स्कूल गर्ल जो फिल्मों की दीवानी है और उसका फिल्मी भूत उतारने के लिए उसके अंकल उसे उस दुनिया को दिखवाती है जहाँ फिल्में बनती हैं। इस फिल्म में धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, नवीन निश्चल, असरानी सब ने अपना खुद का कैरेक्टर निभाया है। इस फिल्म के समय जया जी, जया भादुरी थी उस वक्त, वो FTII पुणे में पढ़ रही थी, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। उन्होंने सत्यजीत रे साहब की एक फिल्म में काम किया था और ऋषिदा ने ये फिल्म देखी थी और उन्हें प्रिंसिपल के रूम में बुलाकर ये रोल ऑफर कर दिया। पुणे पहुंच गए थे वो। जब जया जी शूटिंग के लिए पहुंची तो धर्मेंद्र ने उन्हें देखा और कहा कि तुम इस फिल्म की हीरोइन हो, उम्र क्या है तुम्हारी। बहरहाल ये फिल्म अच्छी चली और हमें मिली जया भादुरी जैसी कमाल की एक्ट्रेस। फिल्म का म्यूजिक वसंत देसाई ने दिया था और गीत वाणी जयराम ने गाए थे, जो बिल्कुल नई आवाज थी। बोले रे पपी हरा, सुना होगा आपने गाना, क्लासिक। ये जबरदस्त हिट हुआ और इस फिल्म में एक प्रार्थना भी थी, हमको मन की शक्ति देना, ये भी सुपर डुपर हिट है। आइए सुनते हैं ये क्लासिक्स इसी फिल्म से।

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
2: हाँ जी जी,
1: आधा kg मसूर दाल,
2: जी जी,
1: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
2: जी जी,
1: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
2: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
1: क्या जी?
2: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
1: वाह जी, क्या बात जी।
2: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
4: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
3: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
4: तो सिंगापुर, गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज, मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
3: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।

0: Some shows don't just play, they stay with you. And when our listeners ask for more, we bring them back. Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for Encore show timings.
1: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.
0: Do take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Masti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
1: Only on Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.
2: Check it out.
3: डायरेक्टर विजयानंद की एक और क्लासिक फिल्म का जिक्र होगा यहाँ पर। मैं हूँ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव के इस शो पर जिसका नाम है यादों का कारवा। मेरा नाम है समर और आज हमारा एक कारवा गुजर रहा है 1971 के साल से। कौन सी फिल्म? तेरे मेरे सपने। एक अच्छे

डॉक्टर के एक बुरे डॉक्टर के रूप में बदलने की कुछ हटकर ये कहानी थी तेरे मेरे सपने। देवानंद साहब के कुछ सबसे अच्छे रोल्स में से इस रोल को मैं मानता हूँ। फिल्म अच्छी चली थी और आज भी देखने लायक है। फिल्म के गाने लिखे थे कविवर गोपाल दास नीरज ने, जो इसी साल 2018 में हमें छोड़कर चले गए। क्या लिखा था उन्होंने, उनके गीतों में कविता का अंश पूरी तरह झलकता था और इसीलिए लिरिक्स कमाल के होते थे। हिंदी साहित्य की बहुत बड़ी संपदा थे वो, बहुत ही कमाल की चीजें लिखी और अच्छा हुआ कि उन्होंने फिल्मों में गाने लिखे, वरना शायद आम हिंदुस्तानी तो महरूम रह जाता उनकी इन बेहद खूबसूरत रचनाओं से। फिर सचिन दा जैसा म्यूजिक डायरेक्टर उन गानों को मिल जाए तो कहना ही क्या, लाजवाब कर देता है वो आपको। जीवन की बगिया महकेगी महकेगी, ये मैंने कसम ली, और जब राधा ने माला जपी शाम की जैसे गाने बन जाते हैं। फिर हेमा मालिनी इस फिल्म में न्यू कमर थी। विजय आनंद, हेमा या राखी दोनों में से किसी एक को लेना चाहते थे, हालांकि राखी जी को उन्होंने आगे ब्लैकमेल में ले लिया था। एक अच्छी देखने और सोचने लायक ये फिल्म है, मौका मिले तो देखिएगा और सोचेगा। फिलहाल तेरे मेरे सपने से ये गाने आपकी तरफ आ रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव के स्टूडियो से। कीप लिसनिंग।

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
2: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
3: गया एग्जिट पर और गाने आ गए
4: नॉन स्टॉप म्यूजिक नॉन स्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
6: चेक इट आउट।

और अब वो वक्त आ गया है जब मुझे आपसे लेनी होगी विदा, लूंगा विदा। लेकिन उससे पहले एक फिल्म का और जिक्र करूंगा। मैं हूँ समर, यादों का कारवां लेकर रेडियो मैसेज 24/7 लाइव पर एक बार फिर से हाजिर हूँ। और आज 1971 की फिल्मों का जब दौर चल रहा है, उनकी बातें चल रही हैं, तो इसी दौर में, इसी कड़ी में एक और फिल्म का जिक्र कर लेता हूँ मैं। कारवां था उसका नाम भाई। ये तो इस साल की सबसे बड़ी म्यूजिकल हिट फिल्मों में से एक थी, इसे कैसे हम भूल सकते हैं। जितेंद्र आशा पारेख का एक एक्शन थ्रिलर था ये, जिसने उस समय बॉक्स ऑफिस पर जमकर तहलका मचाया। हालांकि इसमें बहुत बड़ा हाथ पंचम दा के म्यूजिक का भी था। ये फिल्म नासिर हुसैन साहब ने अपने भाई ताहिर हुसैन के लिए डायरेक्ट की थी। ताहिर हुसैन इसके प्रोड्यूसर थे। और ताहिर हुसैन को आप जानते होंगे, शायद नहीं जानते। ताहिर हुसैन आमिर खान साहब के पिताजी का नाम है। इसी फिल्म में नासिर हुसैन साहब ने अपनी फेवरेट हीरोइन आशा पारेख को आखिरी बार डायरेक्ट किया था और उनकी बर्थडे पर कारवां शेप का एक बड़ा सा केक बनवाया था। फिल्म का एक गाना हाय दैया ये मैं कहां अब हंसी आशा जी ने गाया था और वो ये मानती हैं कि ये गाना पंचम की सबसे मुश्किल धुनों में से एक था, जिसे गाने में उन्हें बहुत परेशानी हुई थी। वैसे आशा जी को इस फिल्म के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था। उन्होंने गाने भी तो कमाल के गाए थे, याद कीजिए, पिया तू अब तो आ जा या अब जो मिले हो तो। इनके अलावा लता जी ने और रफी साहब ने भी जमकर कमाल दिखाया था इस फिल्म में। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन कौन से गाने सुनाऊं आपको। कंप्यूटर जी पिया तू अब तो आ जा तो सुनवा दीजिए, और अगर वक्त मिले तो एक और गाना सुना दीजिएगा। और आप मुझे दे दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी एक और बेहतरीन शो में। सुनते रहिएगा यादों का कारवां, मैं हूं समर, लौटूंगा एक और बेहतरीन शो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने अपनों का ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाइएगा, किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर सज जाइएगा। अभी चलता हूँ, फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।
2: Do take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.

यहाँ से कहाँ जाऊँ, कहाँ मैं छुप जाऊँ, ये आधा सा दिल मैं कैसे लगाऊँ, हूँ खुद से जुदा।

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं।
1: जोश में रहो।
2: ए ऊ आ

0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार।
1: हाँ।

0: मोहब्बत क्या है?
1: मोहब्बत, मोहब्बत जिंदगी है।
2: मोहब्बत क्या है, क्यों है, कहाँ है?
1: मेरा विश्वास है कि भगवान ने सारे दिल के रिश्ते पहले से ही जोड़ दिए हैं, बस उनका मिलना हम पे छोड़ दिया है। उसने हम सबको जोड़ियों में बनाया है और हर एक के लिए कोई एक जीवन साथी है।
2: जीवन साथी, क्या बकवास है, मैं इन सब बातों को नहीं मानता।
1: मुझे तो पूरा भरोसा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरे लिए बनाया गया है और कभी ना कभी मैं उससे जरूर मिलूंगी।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन मुझे कोई बताएगा प्लीज कि मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरे लिए कौन बनाया गया? मेरा मतलब, क्या वो मेरे नाम का बोर्ड लेकर घूम रही होगी?
3: जादू है, नशा है
4: और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना।

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

सुबह की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje sirf Radio Masti 24/7 Live Pen. आप बताइए, आपका मन कहाँ और किस तरफ भाग रहा है? मैं तो भागते भागते यहाँ पर बिल्कुल पहुंच चुकी हूँ ऑन टाइम। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। जी हाँ, अंतरा वापस से आपके पास पहुंच चुकी है। कल रात को छोड़ के गई थी, बस मैंने कहा था ना कुछ घंटे की दूरी और फिर पहुंच जाऊंगी ट्यूजडे वाली मॉर्निंग। और यस, ये मेरा ही शो है, नाम है इसका मस्ती का मंतरा। तो पूरा मन बना के आए हैं कि 10 बजे तक जो है काफी काफी अच्छा माहौल सेट करके ही दिन की जो है वो शुरुआत करेंगे। एंड व्हाट वाज आई थिंकिंग दिस मॉर्निंग, यू नो, कभी कभी लाइफ में ना ऐसा एक फेज आता है जब आप ना हर कोई कोशिश कर रहे होते हो हर चीज की, मतलब आपको लग रहा है आप एफर्ट भी सेम लगा रहे हो, आपकी अप्रोच भी सेम है, लेकिन रिजल्ट जो है ना उसमें कुछ आ ही नहीं रहा है। एंड या दैट्स व्हाट वाज थॉट दिस मॉर्निंग। अलग कुछ कुछ तो चल रहा है लाइफ में जिसके पीछे मैं पड़ी हुई हूँ और मुझे लग रहा है कि यार कहाँ पे, मतलब वेयर इज इट लैकिंग, मतलब कुछ हो क्यों नहीं रहा है। सो वॉट इफ द प्रॉब्लम इज नॉट द एफर्ट, मे बी बेबी इट्स द वे आई एम डूइंग इट। देखिए, जब क्या होता है ना कि खुद की एडवाइजर जो है मैं खुद बहुत ज्यादा हूँ, सो आई कीप ऑन टॉकिंग सो मच टू माई सेल्फ दैट आई कीप ऑन क्वेश्चनिंग माई सेल्फ, एंड देन वो क्वेश्चन जब पूछती हूँ तो उसके आंसर भी खुद को ही जो है बीच बीच में देने पड़ते हैं। थिंक अबाउट इट कि जैसे रोड पे अगर जैसे ट्रैफिक जैम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम वहां पे जो है अगर हमें दूसरा रास्ता दिख रहा होता है तो वी ऑलवेज, एक बार दिमाग में बात आती है ना कि एक इधर से मुड़ के देख लेते हैं, क्या पता यहाँ पे जो है बिल्कुल ट्रैफिक ना मिले, या फिर हम अड़े हुए रहते हैं कि नहीं मैं तो यहाँ से नहीं जाऊंगी। वी डू टेक अ डिटोर, राइट, अ डिफरेंट लेन, मे बी अ स्मार्टर रूट। आई थिंक लाइफ भी कुछ ऐसी सी है, नहीं कभी कभी हम इतने ज्यादा स्टक हो जाते हैं एक ही तरीके पे कि एक ही चीज पे पीछे पड़ जाते, पेल जिसको कहते हैं ना, पेल जाते हैं उसके पीछे, दैट वी फॉरगेट दैट देयर इज ऑलवेज अनदर वे आउट, बस हम इट्स जस्ट दैट वी डोंट एक्सेप्ट इट। सो वेल या यही बात सोचते सोचते मुझे लगा कि मे बी मुझे अपनी स्ट्रैटेजी जो है डायरेक्शन थोड़ा सा है वो चेंज करके देखना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में ग्रोथ आई थिंक तभी आती है जब हम अपने कंफर्ट जोन के बाहर सोचना शुरू करते हैं, जब हम ये मान लेते हैं कि मे बी देयर इज ऑल्सो अनदर वे और मे बी दैट वे कैन बी अ बेटर वे एज वेल। सो वेल, आज का मस्ती का मंत्र कुछ ऐसा ही है, व्हेन थिंग्स डोंट चेंज डोंट लूज होप, जस्ट चेंज द पाथवे। चलिए इसी बात के साथ शुरू करते हैं, यहाँ पर अच्छे अच्छे गाने लगाएंगे, अच्छे अच्छे गाने सुनेंगे और लेंगे बहुत सारी अपडेट्स ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। गुड मॉर्निंग।

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो एक केजी आटा,
2: हाँ जी जी,
1: आधा केजी मसूर दाल,
2: जी जी,
1: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
2: जी जी।
1: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
2: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
1: क्या जी?
2: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो, और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
1: वाजी, क्या बात जी।
2: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
0: सुबह की डोज ऑफ फन एंड फैक्ट्स, मस्ती का मंत्र विद आरजे अंतरा।
3: वेलकम बैक, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 7 बजकर हो चुके हैं 21 मिनट। यहाँ पर धीरे धीरे सब लोग अपना ट्यून इन होते हुए जा रहे हैं, अपनी अपनी जिंदगी, अपनी अपनी रूटीन लाइफ के साथ बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है दिन की। जिसको जहाँ जहाँ जिस जिस डेस्टिनेशन पे जाना है, जो जो तैयारियां करनी है, उस पर हम धीरे धीरे हुए ढलते हुए जा रहे हैं। हम लोग कितने यूनिक से है ना, हाउ ब्यूटिफुल वी ऑल आर, राइट? वी ऑल हैव आर ओन सेट ऑफ रूटीन्स एंड हाउ every single day without fail, okay? Day in, day out, हम लोग यही चीज बार बार बार बार लगातार करते रहते हैं, और फिर कहते हैं कि यार consistency नहीं आ रही है। भाई एक चीज तो हम कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, वो है अडल्टिंग, दैट इज फॉर श्योर, एंड इट इज नॉट दैट मच ऑफ फन, बट वेल इट इज व्हाट इट इज। एंड आई थिंक जब इस तरह के थॉट्स आपके जहन में आते हैं, स्पेशली जो आर्टिस्ट टाइप होता है ना, तो उनको लगता है कि इसका कुछ बना दिया जाए, लाइक समवेयर मे बी अ स्पेस वेयर आई कैन पुट आउट ऑल ऑफ दीज थॉट्स। एंड आई थिंक हमारे जो ये आर्टिस्ट है, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया हुआ है। सो इफ यू नो अबाउट, अरे योगेश जी आ गए सुबह सुबह अपने रूटीन के साथ, ये भी बिल्कुल शुरू कर चुके हैं अपना दिन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। मांगा के बारे में जो है आपने सुना होगा, पता नहीं, सुबह सुबह इतना बढ़िया गाना, मैं हमेशा एक गाना बढ़िया चलाती हूँ वैसे। वेल कमिंग बैक टू द मांगा, तो सिंगापुर में एक मांगा जो है काफी मांग में है, काफी वायरल हो रहा है। इट्स अबाउट द डेली लाइफ विच हैज एब्सोल्युटली गॉन वायरल। क्रिएटर जो है, जब भी कोई भी अच्छी चीज निकलती है ना, आप देखना क्रिएटर हमेशा अनोनिमस रहना चाहता है, उसको नहीं चाहिए कि हम मेरे को मेरे नाम से मत जानो, आप मेरे सूडोनिम से जो है वो जाना करो। सो अ न्यू मांगा सेट इन सिंगापुर, इट हैज गॉन वायरल ऑन सोशल मीडिया, इट हैज बीन टाइटल्ड एज सिंगल इन 35, सिंगल एट 35 आई थिंक। सो इनका डेब्यू चैप्टर जो है बहुत सारे इश्यूज को लेकर बात कर रहा है। इट हाइलाइट्स एवरी डे एडल्ट की एंजाइटीज एंड शोकेसिंग प्रोटैगनिस्ट का करियर का स्टैग्नेशन and his fierce bidding war for this resale flat. Jo online reception hai, wo itna positive hai that everybody has started talking about it. 3,600 upvotes hai, 200 comments hai Reddit wagaira par, and the readers are also applauding the inclusion of Singaporean sites in the whole manga also. So matlab chahe wo ऑफिस का अटायर हो, या फिर वो स्टैंडअप स्टेसी का हमारा अपना एमआरटी के कैंपेन्स हो, छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बड़ी डिफरेंसेस क्रिएट करती हैं। एंड मुझे बड़ा ही फैसिनेटिंग लगता है जब अपने थॉट्स को इस तरह से एक आर्टिस्ट कॉमिक के रूप में या मांगा के रूप में ड्रॉ करके या फिर एक स्टोरी लाइन बनाकर सामने प्रेजेंट कर पाता है। इट्स सच अ यूनिक टैलेंट एंड आई जस्ट कंप्लीटली लव इट। आई होप आई गेट माय हैंड्स ऑन दिस दो। सो वेल, इसी बात के साथ सुबह सुबह एक और अच्छा गाना, राहत फतेह अली खान साहब की आवाज और मूवी का नाम माय नेम इज खान। कमिंग अप नेक्स्ट इज सजदा ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। गुड मॉर्निंग।

आईना देख के बोले ये संवरने वाले अब तो बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले।

0: बाजू
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: मुझे ना बड़े दिनों बाद जब कोई गाना हाथ में लगता है तो मैं उसको जाने नहीं देती हूँ, कहीं ना कहीं उसको फिट कर ही देती हूँ। दिस इज वन ऑफ दोस सॉन्ग्स, पता नहीं कहाँ से याद आया एंड आई वाज लाइक यार बड़े टाइम हो गया ये गाना सुना नहीं है। इफ यू डोंट रिमेम्बर दिस वाज, आपको पता है सिंगर्स कौन है इसके? Tell me if you can guess just by the voice of it. देखते हैं कितना अच्छा आप पहचान पाते हो। But 7:37 हो चुके हैं, आप स्टूडियो क्लॉक में आए, आपको ट्रैफिक का अपडेट दे दे। फिलहाल हैवी ट्रैफिक आपको मिलेगा ऑन SLE towards CTE between Upper Thomson Road and Mandai Avenue. हैवी ट्रैफिक की खबर CTE टनल में towards AYE at Outram Road exit, और मिलेगा हैवी ट्रैफिक ऑन AYE towards MCE between Bonavista and Jurong Town Hall Road. So ये रहा हमारा इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट. Right here, right now. Let's move on. Gaane ke us paar. Coming back very, very soon with the ugly cover. Good morning.

0: दिल टूट जाए या चार्जर गुम हो जाए, मम्मा सब संभाल लेती है।
1: जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ।
0: This Mother's Day, give her the royal treatment she truly deserves with a majestic Mother's Day celebration, Shahi Mahar Rani. Choose from a lavish lunch buffet or a special a la carte dinner experience on Sunday, 10th May. From tandoori delights to maa ki dal to kulfi pops and jalebis. All this at just $62 plus plus per adult and $42 plus plus per child. Plus, every mom receives a complimentary jar of gulab jamun or namak pare and a special photo card to capture the memory. Stay Shahi lunch and dinner at Shahi Maharani Raffle City. Limited seats, book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions applied.
2: 1, 2, 3, 4.
3: Do take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
4: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
5: Check it out.
3: Your weekly mood lift mantra, only with RJ Antra.
6: I am so proud of you guys. I mean, मतलब ऐसा एकदम वैसी वाली फीलिंग आती है ना कि यार मजे ही आ गया यार, क्या बात है क्या बात है. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, मैं हूं ड्रॉप के साथ, यहाँ पे चल रहा है मस्ती का बजरा. Why am I proud? Because थोड़ी देर पहले मैंने एक पूछा था गाना प्ले करके कि इसमें सिंगर्स की आवाज बताओ किस की है. सो वेल, सबके जो है जवाब जो आए हाँ कुछ थोड़े से कंफ्यूज हो गए, बट देन एवरीबडी वॉज राइट. And I am so glad. आशा था और जगजीत सिंह जी की आवाज पे वो गाना था. It's just so beautiful. वो सुनते सुनते किसी को I think योगेश को एक और गाना याद आ गया. Let me reconfirm with him and if I have, of course I will have that गाना if that is the one I am also thinking. Let's also talk about the very very recent भाई मेट गाला का कारपेट खुल चुका है दोस्तों. And now मेट गाला वहीं पे जहाँ पे अलग अलग तरीके के, ऐसे तो अगर बोला जाए तो अतरंगी तरीके के जो है कॉस्ट्यूम्स आपको वहाँ पे दिखाई देते हैं, बट इट हैज अ मीनिंग बिहाइंड इट राइट. सो एवरी ईयर मेट गाला कम्स अप विद दिस थीम एंड जो वहाँ पे इन्वाइटेड होते हैं कारपेट पे वॉक करने के लिए दे हैव टू. सो बेसिकली ये फैशन डिजाइनर्स का एग्जामिनेशन होता है कि आप कितना सही समझते हो जो ब्रीफ आपको दिया गया है. So 2026 का मेट गाला का जो है थीम है कॉस्ट्यूम आर्ट. ओके, फैशन इज आर्ट. नाउ एवरीबॉडी हैड टू थिंक ऑन दोज लाइंस एंड देन इतना मुझे पता ही चला था, फिर अचानक से करण जौहर मेरे सामने आ गए जिनका डेब्यू हुआ इस बार मेट गाला में. ओ माय गॉड, डेब्यू एंड हाउ. आई मीन ही लुक लाइक इंडिया वॉकिंग ऑन रेड कार्पेट. इट्स आई मीन आई एम नॉट द वन कि मेरे को ऐसा कभी कुछ यू नो, जब तक मुझे बहुत ही ज्यादा कुछ फ्लैटरिंग नहीं लगता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तब तक मैं इन सब चीजों में उतना ज्यादा इन्वॉल्व होती नहीं हूँ. बट यस, ही मेक्स दिस ग्रैंड ग्रैंड मेट गाला डेब्यू इन राजा रवि वर्मा इंस्पायर्ड एंसेंबल. इट इज, जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा. लेट मी ट्राई एंड पुट इट पोस्ट इट हमारे जो है फेसबुक पेज पर, अदरवाइज मुझसे पूछ लो, गूगल कर लो, आपको पता चल ही जाएगा. सो वेल, इट इज ऑफ कोर्स डिजाइन्ड बाय नन अदर देन मनीष मल्होत्रा एंड इंस्पायर्ड बाय द आर्ट ऑफ राजा रवि वर्मा. आपने इनका नाम हिस्ट्री की किताबों में डेफिनेटली पढ़ा ही पढ़ा होगा. फ्रेम्ड इन इटर्निटी एंड दैट्स वॉट करण जौहर ऑल्सो रोड दैट राजा रवि वर्मा फेल्ट राइट बिकॉज हिज वर्क डज समथिंग आई हैव ऑलवेज ट्राइड do in cinema. He painted feelings so well. अपने Indian culture को global stage पे लाने के लिए with the vision of couture and gratitude woven together, एक art form in itself which he has mastered. So yeah, he just felt like कि किसी ने ना बहुत सारी पेंटिंग्स उनके केप, उनके पूरे वो जैकेट जो उन्होंने

पहना हुआ है फ्लोर लेंथ का, उसमें कर दिया हो, बना दिया हो, एंड इट्स जस्ट सो प्रिटी, इट्स ब्यूटिफुल. एंड आई एम ग्लैड दैट ऑल आर फैशन डिजाइनर्स एंड द पीपल हु आर वेयरिंग दीज थिंग, एवरीबडी इज giving the due credit to all these artisans who have taken hours and hours to create these big masterpieces. Yes, ye bahut zyada zaruri tha, I think. Well, aisi baat ke saath badhte hain aage. Teri baaton mein aisa uljha jiya. Okay, jab ulaj gaya hai to sun ke suljha dete hain. Good morning.

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: आम ले लो,
2: अल्फांसो,
1: बडानी, कैसर आम ले लो।
3: क्यों, आ गई ना इंडिया के आम की याद? गुड न्यूज, वो टेस्ट अब यही सिंगापुर में। फ्रेश अल्फांसो, केसर और बादामी मैंगोज नाउ एट जीजी मार्ट। ऑर्डर नाउ एट ggmartonline.com और कॉल 8085657।
4: हर ट्यूसडे एक नया ट्विस्ट, मस्ती का मंत्रा विद